सभा की शुरुआत अनमोल विचार के साथ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण केवल हमारी चारों ओर का वातावरण नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ वायु, निर्मल जल और हरियाली से भरी धरती ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे अनमोल विरासत है। आइए आज इस बात पर विचार करें। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लें और एक पेड़, एक कदम, एक प्रयास के माध्यम से धरती को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। प्रकृति का सम्मान ही मानवता का सम्मान है। पर्यावरण की रक्षा करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए हरियाली बढ़ाने और प्रकृति को बचाने का प्रण लें। अनमोल विचार के पश्चात अब आरंभ होता है हमारा भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। श्रोताओं, सबसे पहले आइए सुनते हैं मातृ वंदना।

अभी आप जगजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये भजन सुन रहे थे, और अब आइए सुनते हैं शब्द भाई प्रीतम सिंह और प्यारा सिंह की आवाज़ों में।

0: अभी आप सुन रहे थे शब्द भाई प्रीतम सिंह और प्यारा सिंह की आवाज़ों में। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज की हमारी चर्चा का विषय है पशुओं की आयु ज्ञात करना। कुछ एक सरकारी तथा निजी प्रक्षेत्रों को छोड़कर हमारे देश में साधारणतः पशुओं के जन्म आदि का लेखा जोखा नहीं रखा जाता, इसलिए पशुओं की ठीक ठीक आयु का पता करना मुश्किल हो जाता है। जब किसान भाई बाजार से या अन्य किसानों से पशु खरीदते हैं तो उस वक्त पशुओं की सही सही आयु का पता करना बहुत जरूरी होता है। पशु के उपयोगी जीवन की सही जानकारी के लिए यह जरूरी है कि पशुओं की आयु की ठीक ठीक जानकारी हो। पशुओं की ठीक आयु ज्ञात करने की मुख्यतः चार विधियां हैं। पशुओं के दांतों, सींगों व खुरों को देखकर व पशुओं की साधारण दशा को देखकर। इन सब विधियों में दांतों व सींगों द्वारा आयु ज्ञात करना अधिक सरल है। प्राचीन युग से ही पशुपालक पशुओं के दांतों द्वारा आयु निर्णय करने की विधि का उपयोग करते रहे हैं। यदि गौर से देखें तो जन्म के समय गाय या भैंस के बच्चों के मुंह के निचले जबड़े में दांतों के कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि इनके बच्चों के जन्म के समय दांत निकले रहते हैं। इन दांतों को दूध का दांत कहा जाता है। लगभग चौथे सप्ताह के अंत तक बच्चों के आगे के दांत बाहर आ जाते हैं। ये दांत सफेद रंग के, चमकीले, तेज व छोटे होते हैं। धीरे धीरे ये दांत घिसने लगते हैं। साधारणतः दांतों के मध्य की जोड़ी लगभग 10 माह की आयु में घिस जाती है, बगल की जोड़ी 15 माह की आयु पर और किनारे की जोड़ी 18 माह की आयु पर पूर्ण रूप से घिस जाती है। दूध के दांतों की मध्य की जोड़ी 2 से 2.5 वर्ष की आयु में और 3 से 3.5 वर्ष की आयु में इस जोड़ी के आसपास के दो दांत गिर जाते हैं। 8 से 8.5 वर्ष की आयु में बगल वाली दांतों की जोड़ी गिर जाती है और इनके स्थान पर स्थायी दांत निकल आते हैं। 5 से 5.5 वर्ष की आयु में पशुओं के 8 स्थायी दांत निकल आते हैं और ऐसी दशा में पशु को पूर्ण वयस्क कहा जाता है। किसान भाइयों, 5 से 6 वर्ष तक पशुओं के दांतों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, परंतु 6 वर्ष की अवस्था के पश्चात स्थायी दांतों का घिसना प्रारंभ हो जाता है। 7 से 8 वर्ष के बीच दांतों की मध्य वाली जोड़ी, 8 से 9 वर्ष के बीच निकट मध्य वाली जोड़ी और 9 से 10 वर्ष के बीच बगल वाली जोड़ी घिस जाती है। पशु जब 10 से 11 वर्ष के होते हैं तो उस वक्त किनारे वाली दांतों की जोड़ी घिस जाती है। लगभग 12 वर्ष की आयु में सभी दांत घिसकर वर्गाकार शक्ल के हो जाते हैं। दांतों की यह घिसावट मसूड़ों की जड़ के निकट तक होती है और जब ऐसा होता है तो उस वक्त पशुओं को हम बूढ़ा कह सकते हैं। हालांकि ये विधि आयु ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि है, फिर भी इससे 100% आयु का ज्ञान हमें नहीं हो पाता। केवल वर्षों में ही पशु की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। किसान भाइयों, दांतों के अतिरिक्त पशुओं की आयु सींगों द्वारा भी मालूम की जा सकती है। ध्यानपूर्वक देखने से पशुओं के सींगों पर गोल गोल छल्ले बने दिखाई देते हैं। 3 वर्ष

0: आयु में सींगों में एक छल्ला बन जाता है। ये आयु ज्ञात करने की सबसे सरल विधि है।
1: अभी आप सुन रहे थे एग्री टिप्स।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि

0: सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today. He will dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat across the road, power and industrial sectors. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary healthcare across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution rates, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. These projects span various sectors including healthcare, civil aviation, tourism, infrastructure, connectivity and public welfare. Prime Minister Narendra Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yoga 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said, Ministry of Ayush has launched a Yoga 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthy lifestyle across communities. The Prime Minister urged athletes from across the world to help spread awareness about yoga beyond the championship.
2: जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
1: Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare, and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health, and people-to-people ties. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1987 batch IS officer, as advisor to the Prime Minister Narendra Modi. The Department of Personnel and Training informed that Mr. Kapoor's extended tenure in the Prime Minister's office takes effect on 10th of this month for a period of 1 year. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Neelkanth

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवे सेंटिनल आज श्री विजयपुरम से माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर शाम के 6:30 पर छूटेगा। वापसी कल दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से चलकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु जहाज कल 7 तारीख को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान की यात्रा पर रवाना होगा। वापसी कल ही रात 8 बजे लिटिल अंडमान से चलकर श्री विजयपुरम के लिए होगी। वहीं एमवी कालीघाट सोमवार 8 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान होते हुए कारनिकोबार की यात्रा पर प्रस्थान करेगा और अगले रोज दोपहर 12 बजे कारनिकोबार से चलकर श्री विजयपुरम के लिए लौटेगा। सिंधु जहाज मंगलवार 9 जून को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से नानकौरी होते हुए कैमल बे जाएगा। रवानगी 11 तारीख को सवेरे 8 बजे कैमल बे से चलकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। और अब अंतरद्वीप जाने वाली जलयान एमवी हट पे आज श्री विजयपुरम से दिन के 11 बजे शहीद द्वीप की यात्रा पर छूटेगा। जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा तथा वहां से ये जलयान दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉली बॉय आज दिन के 11:30 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर छूटेगा। जलयान दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा तथा शहीद द्वीप से दोपहर बाद 3:30 पर श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रीट आइलैंड आज दोपहर बाद 2:30 पर प्रस्थान करेगा। वापसी आज ही शहीद द्वीप से शाम के 4:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। वहीं एमवी कमोटा आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा। रवानगी कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। कल शनिवार 6 जून को एमवी हट पे प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर प्रस्थान करेगा। वापसी कल दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानीचंगा कल सवेरे 6:15

0: पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस आएगा। वहीं स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान कल सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से चलकर श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। वहीं एमवी जॉली बॉय कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रीट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर प्रस्थान करेगा। वापसी अगले रोज सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। वहीं शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी नॉर्थ पैसेज कल श्री विजयपुरम से दिन के 11 बजे जाएगा। वहां से ये जलयान दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। अभी आप सुन रहे थे जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष।

इंद्रधनुष कार्यक्रम में श्रोताओं स्वीकार करें हेमलता का प्यार भरा नमस्कार। जब उम्मीदों के फूल खिलते हैं तो कुदरत में बहार सी छा जाती है। बहार यानी खुशहाली, सौंदर्य, ताजगी, रौनक और सुहावना मौसम। जब दिल खुश हो तो फिजाओं में बहार छाने लगती है और हर मौसम प्यार का लगने लगता है।

0: मौसम की बहार आई है, दिलों में खुशियाँ छाई है, ऐसे में दिलबर का दीदार हो जाए तो ये कहूँ कि आप आए तो बहार आए।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे

बहार और बहारों का मौसम कभी दिल को रुमानी कर जाती है तो कभी किसी की याद सताती है। ये बहार साथी है मेरा क्योंकि ये मेरे साथ हंसती है, रोती है और गाती है। बहार का संदेश है, हर कठिन समय के बाद खुशियों का मौसम जरूर आता है।

अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 260वीं कड़ी। गायक हैं सुरेश वाडिकर और अनुराधा पौडवाल।

शबरी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति जिसके अभाव में जात पात, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य सभी निरर्थक और निष्फल होते हैं। इस प्रकार जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ होती है, वो शबरी को सहज ही प्राप्त हो गई। क्या उसे जनक नंदिनी सीता का कुछ अता पता है? श्री राम के इस प्रश्न के उत्तर में शबरी उन्हें पंपा नामक सरोवर जाने का परामर्श देती हैं, जहां उनकी भेंट होगी धीर बुद्धि वाले वानर राज सुग्रीव से। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। अतुलनीय शोभा युक्त वन में सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं, ये देखकर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। राम लक्ष्मण को देखकर हिरण भागने लगते हैं, तो हिरनिया मानो उन्हें आश्वस्त करती हैं कि तुम्हें भयभीत होने का कारण नहीं, क्योंकि तुम साधारण हिरण के वंशज हो। ये लोग तो सोने का मृग खोजने आए हैं।

सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अभी आपने रामचरितमानस गान की 260वीं कड़ी सुनी। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, वतन के गीत कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं चंद देशभक्ति रचनाएं।

वतन के गीत देशगान के तहत अभी आप चंद देशभक्ति रचनाएं सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे की 6:50 हुए हैं। सुनिए मौसम का हाल व कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आपको बता दें मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार द्वीपों के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा हुई तथा एक दो स्थानों में तेज हवाएं रिकॉर्ड की गई। पोर्ट ब्लेयर में 11 सेंटीमीटर, लॉन्ग आइलैंड में 5, मायाबंदर में 3, हडबे में 2 तथा नानकौरी में 1 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के चलते हवाओं की गति लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से रहेंगी, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती हैं। ऐसे में समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 8 जून तक समुद्र में न जाएं। ये था मौसम का हाल। और अब एक नज़र हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागनी और ठीक उसी वक्त विविध भारती एफएम मुंबई पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत सुनेगा श्री विकास यादव IFS के साथ की गई पर्यावरण दिवस पर विशेष भेंट वार्ता। विषय रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस। सवेरे के 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। फनकार होंगे मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने सुनेगा सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित जसराज का गायन प्रसारित किया जाएगा। संदेश टू सोल्जर्स सुनेगा सुबह 10:00। दिन के 11:00 आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दिन के 11:30 पर सुनिएगा निकोबारी कार्यक्रम। इसके तहत लोकगीत आप सुनेंगे। तेलुगु कार्यक्रम में फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे दोपहर के 12:00। 12:30 पर सुनिएगा मलयालम कार्यक्रम। इसके तहत विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा होगी। महफिले कव्वाली कार्यक्रम के तहत कव्वाल होंगे इकबाल साबरी और अफजल साबरी। कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर के 1:10 और दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी व सभा समाप्ति उद्घोषणा के पश्चात 100.9 MHz पर आप सुनेंगे फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स। कार्यक्रम यूं ही गाते रहो सुनेगा दोपहर बाद 3:30 पर। शाम के 5:00 होगी हमारी दूसरी सभा की शुरुआत तमिल कार्यक्रम के साथ। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा शाम के 5:30। इसके तहत सुनेगा आधुनिक गीत। शाम 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम के तहत श्रीमती रेखा मनोज से की गई बातचीत का विषय रहेगा हरी मिर्ची की खेती। समाचार तरंग ने शाम के 6:30 पर 6:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुनेगा शाम के 7:20 पर। शाम 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम के तहत सुनेगा विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा। तत्पश्चात लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो फ्रेंड्स। रात 8:00 सुनेगा दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग। रोजगार समाचार और गौरवगान आप सुन पाएंगे रात्रि के 8:30 पर और रात 10:00 सुनिए कार्यक्रम संदेश आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर सुनिए करंट अफेयर्स कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे विविध भारती मुंबई पर आप रात 10:00 सुनिए

का प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सीमायां स्थानीय सुगमकर्ताभ्य च वस्तुवाहनानि समर्पयन्ति स्म। विदेशमंत्री डॉ जयशंकर ह्यः नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रीज इत्यनेन सह अमिलत्। द्वावेव नेतारो भारत वेनेजुएला देशयो संबंध विषये चर्चां कृतवन्तौ। ऊर्जा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा वाहन च इत्यादीनि क्षेत्राणि अधिकृत्य सहयोगं वर्धयितुं नूतनान् अवसरान् च अन्विष्यताम्। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम तथा आसपास के क्षेत्रों में 58.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 98% रही, जबकि न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान रहा 27.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:54 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:41। और अब एयर इंडिया की आज की उड़ानें। दिल्ली से आ रहा विमान 2937 आज श्री विजयपुरम पहुंचेगा दिन की 11 बजे तथा श्री विजयपुरम से विमान 2936 दिन के 11:40 पर दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा। और अब एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित किया गया है। और अब श्रोताओं, हम आपको बता दें आज सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे श्री विकास यादव IFS के साथ की गई पर्यावरण दिवस पर विशेष भेंट वार्ता विश्व पर्यावरण दिवस। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने सुनेगा सवेरे 9 बजे संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

दोपहर 1:10 पर महफिल कव्वाली कार्यक्रम के तहत आज कव्वाल होंगे इकबाल साबरी और अफजल साबरी। और दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 होने को

0: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। द्वीपों के उपराज्यपाल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर युवाओं और छात्रों से पर्यावरण संरक्षण के अग्रदूत बनने की अपील की है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रतिष्ठित BIS प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कृषि विभाग ने धान के किसानों, सब्जी उत्पादकों, बागवानी और मसाला उत्पादकों के लिए परामर्श जारी किया है और ख़राब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 8 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने द्वीपवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस वर्ष का विषय है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। उन्होंने कहा कि जलवायु चुनौतियों से निपटने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सतत भविष्य सुरक्षित करने में प्रकृति हमारी सबसे बड़ी सहयोगी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को असाधारण प्राकृतिक संपदा का वरदान प्राप्त है, जिसमें घने जंगल, प्राचीन समुद्र, जीवंत मूंगा, विस्तृत मैंग्रोव और अद्वितीय जैव विविधता शामिल है। बढ़ते पर्यावरणीय संकटों और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए इन संवेदनशील प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उपराज्यपाल ने प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों, युवा समूहों और नागरिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मैंग्रोव वृक्षारोपण, समुद्र तट सफाई अभियान जैसी पहलों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में लगातार योगदान दे रहे हैं। उन्होंने द्वीपवासियों, विशेष रूप से युवाओं और छात्रों से पर्यावरण संरक्षण के अग्रदूत बनने की अपील की है। विश्व पर्यावरण दिवस के हिस्से के रूप में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की ओर से द्वीप जैव विविधता पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इनमें स्कूली और कॉलेज के छात्रों के लिए चित्रकला और फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं, द्वीपों की जीव विविधता पर विशेष प्रदर्शनी, सेमिनार, सफाई अभियान जैसी गतिविधियाँ चलाई गईं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में की गई थी। इस वर्ष का विषय नाउ फॉर क्लाइमेट है, जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और तत्काल कार्रवाई पर केंद्रित है। इस संबंध में विभाग आज शाम 3:30 बजे कार्यालय परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रतिष्ठित BIS प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ये प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो के वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा किए गए द्वितीय चरण के ऑडिट के बाद प्रदान किया गया। ये प्रमाणन संस्थान की गुणवत्ता प्रबंधन, प्रभावी शासन, रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यवस्थित दस्तावेजीकरण और संस्थागत प्रदर्शन में निरंतर सुधार के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के प्रति संस्थान की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर विशेष श्रृंखला के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में और मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की गई, जिम पर अब तक कुल कारोबार 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। सूक्ष्म

और मध्यम उद्यम के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। प्रादेशिक समाचार, आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है किसानों के लिए परामर्श और मौसम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन और भारी बारिश को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को समय पर मौसमी कृषि कार्य शुरू करने की सलाह दी है। विभाग ने धान के किसानों, सब्जी उत्पादकों, बागवानी और मसाला उत्पादकों के लिए परामर्श जारी करते हुए कहा है कि किसान नर्सरी की बुआई और खेत की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए धान की उन्नत किस्मों के बीज द्वीपों के सभी कृषि उपडिपो पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा पारंपरिक धान की किस्मों के बीज निम्बोडेरा स्थित गुड़न फार्म में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री के लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि उपडिपो, क्षेत्रीय कृषि कार्यालय या किसान कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। द्वीप समूह में 10 जून तक एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 8 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कल लोक निवास में उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी से शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान प्रशासन की विभिन्न वृहद परियोजनाओं जैसे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिप पोर्ट, नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, GNI टाउनशिप और डीप वाटर पोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य हेल्थ सोसाइटी और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जा रहे हैं। दो श्रेणियों में आयोजित होने वाले 500 से 800 शब्दों की निबंध लेखन प्रतियोगिता अंग्रेजी या हिंदी में से किसी भी भाषा में A4 आकार के पेपर में हाथ से लिखी होनी चाहिए। निबंध मौलिक और तंबाकू नियंत्रण या तंबाकू के दुष्प्रभावों से संबंधित होना चाहिए। तंबाकू विरोधी जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली विषय के साथ चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। चित्र A2 ड्राइंग शीट या हाफ साइज चार्ट पेपर पर बनाई जानी चाहिए। प्रतिभागियों को अपना नाम, उम्र, पता और संपर्क नंबर लिखना होगा। प्रत्येक श्रेणियों के लिए नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। आवेदन 10 जून तक राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल का कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। प्रशासन के निर्देशों के तहत विद्युत निदेशक के नेतृत्व में एक विशेष टीम और बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता तकनीकी को स्थिति की निगरानी करने और मायाबंदर व टुगापुर में मौजूदा बिजली समस्याओं के समाधान के लिए मध्य उत्तर अंडमान भेजा गया है। विभाग ने कहा है कि हायरिंग पावर प्लांट पानीघाट में DG सेट खराब हो जाने के कारण इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है। DG सेट की मरम्मत का कार्य जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्वीपों के उपराज्यपाल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर युवाओं और छात्रों से पर्यावरण संरक्षण के अग्रदूत बनने की अपील की है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रतिष्ठित BIS प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कृषि विभाग ने धान के किसानों, सब्जी उत्पादकों, बागवानी और मसाला उत्पादकों के लिए परामर्श जारी किया है और खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 8 जून तक समुद्र में न जाने की

0: सलाह दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम देश रागनी।

नमस्कार, आदाब, जय हिंद। श्रोताओं, वतन से मोहब्बत का कोई एक मौसम नहीं होता, ये वो धड़कन है जो हमारे दिल में हर पल धड़कती है। आज के इस सफर में हम गीतों के उन मोतियों को पिरोने जा रहे हैं जो हमारी मिट्टी की खुशबू और माँ भारती की वंदना से जुड़े हैं।

किसी ने सच ही कहा है, लहू वतन का है जिसकी रगों में बहता है, लहू वतन का है जिसकी रगों में बहता है, वही तो शान से मैं हूँ इंडियन कहता है। ये एहसास हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारी आत्मा इस देश की मिट्टी से हमेशा जुड़ी रहती है।

मानचित्र पर उकेरी गई सीमाएं केवल रेखाएं नहीं होती, वे करोड़ों सपनों, अनगिनत बलिदानों एवं महान संस्कृति की पहचान होती है। उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियां हो, दक्षिण में सागर की लहरें, पूर्व की हरियाली हो या पश्चिम की सुनहरी धरती, हर कोना अपने आप में अद्भुत है। विविधताओं से भरा हमारा भारत एकता का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।

श्रोताओं, घड़ी की सुइयां कह रही हैं अब विदा लेने का वक्त हो चुका है, पर चलते चलते बस यही कहेंगे कि देश के प्रति हमारा प्यार सिर्फ गीतों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि हमारे हर छोटे बड़े काम में देश हित सबसे पहले हो। जय हिंद, जय भारत।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

पेड़ों की छांव में जीवन का सुकून बसता है, नदियों की धारा में प्रकृति का संगीत बहता है। आओ मिलकर

पेड़ों की छांव में जीवन का सुकून बसता है, नदियों की धारा में प्रकृति का संगीत बहता है। आओ मिलकर ऐसा संसार बनाएं जहां हर दिन पर्यावरण का उत्सव कहलाए। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग अंडमान। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज 5 जून है, यानी आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। इस अवसर पर हम बात करेंगे उस अमूल्य धरोहर की, जिसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं, यानी हमारा पर्यावरण। चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं श्री विकास यादव IFS के साथ ली गई पर्यावरण दिवस पर विशेष भेंट वार्ता, विश्व पर्यावरण दिवस 2026।

0: सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज 5 जून है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या है इसके मनाए जाने का उद्देश्य, इन्हीं प्रश्नों पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिवीजन श्री विकास यादव IFS। विकास यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
1: बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो आप बताएं कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका उद्देश्य?
1: सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के थ्रू सभी श्रोताओं को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम हर साल 5 जून को मनाते हैं। इसकी शुरुआत दरअसल हुई थी 1972 में, जब एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। उसमें ये निश्चय किया गया कि हम हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाएंगे, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आमजन हैं उनको पर्यावरण की तरफ सेंसिटाइज करना, उनको ये याद दिलाना कि पर्यावरण हमसे अलग नहीं है, हम उसका हिस्सा ही हैं। 1973 में पहली बार इसको मनाया गया था और आज हम 54वां पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। इसके अलावा इसका एक उद्देश्य यह भी है कि सभी सरकारों, प्राइवेट कंपनीज और आम जन को हम एक कॉमन मंच पर लेके आते हैं, और हर साल की एक थीम होती है
0: जी,
1: जिसपे हम बेसिकली उस कॉमन ग्राउंड पे सबको उसके बारे में जानकारी देते हैं कि ये एक मुख्य उद्देश्य है इसका।
0: जैसे कि आपने थीम के बारे में कहा, तो इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है?
1: इस वर्ष जो होस्ट कंट्री कर रहा है वो अजरबैजान है, बाकू में ये आयोजित किया जा रहा है। इस बार की थीम है क्लाइमेट एक्शन, और इसका मेन मैसेज जो है इसके साथ में वो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आर फ्यूचर। क्लाइमेट एक्शन से मतलब ये है कि अब ये सवाल ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज होने वाला है या उसका प्रभाव क्या होगा, अब सवाल ये है कि मानवता कैसे एकजुट होकर किस दिशा में इसमें समाधान ढूंढती है और कैसे हम मिलकर इसका सामना करते हैं। तो क्लाइमेट एक्शन उसके बारे में है। इंस्पायर्ड बाय नेचर से ये कहने का अर्थ है कि इसके समाधान भी हम प्रकृति में ही ढूंढ सकते हैं। हमारे पेड़ पौधे, जंगल, नदियाँ, मिट्टी, इन्हीं में अगर हम देखें तो इनमें समाधान भी इसके छुपे हैं। तो यह है इसका मेन थीम है इस बार।
0: जी, जैसे कि आपने जलवायु के बारे में बात की, तो जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं?
1: जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण मुख्यतः रूप से देखेंगे तो दो कारण मेन हैं। एक तो है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाली जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, जो हमारी गाड़ियों में यूज़ होते हैं और विभिन्न अलग चीज़ों में यूज़ होते हैं, उनका यूज़ होने से तो उससे क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न होती हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन बढ़ता है। इसका दूसरा मुख्य कारण है कि वनों की कटाई, और वो भी अवैज्ञानिक कटाई बेसिकली, क्योंकि अगर वैज्ञानिक ढंग से अगर जंगलों को हम अगर उनकी सतत रूप से सस्टेनेबल रूप में उसको काटते हैं तो वह फिर भी एक मतलब एक अच्छा प्रयास है, उसके अंदर हम सस्टेनेबल वे के अंदर काट सकते हैं, पर गैर कानूनी रूप से और अवैज्ञानिक रूप से जब वनों की कटाई होती है तो वो भी एक मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन का।
0: तो वनों की कटाई और जैव विविधता में कमी, इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
1: देखिए, वन जो है वो सिर्फ एक पेड़ों का समूह नहीं है, वो आधारशिला है हमारे जीवन की। इसमें हजारों तरीके की प्रजातियां, एक ही पेड़ में अगर आप देखेंगे तो पेड़ बहुत सारे पक्षियों को, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को, बहुत अलग अलग तरीके छोटे से लेके बड़े जीवों को स्थान प्रदान करता है।

0: को बांध के रखता है, भूजल पानी का लेवल बढ़ाता है। तो वनों की कटाई से मतलब हम सिर्फ एक चीज को नहीं खो रहे हैं, पूरा एक श्रृंखला को खो रहे हैं।
1: जी
0: जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, ये बेसिकली जीवन का आधार है। हर जीव जंतु का, हर एक जो क्रिएचर है उसका महत्व है। अगर हम किसी भी जीव जंतु या किसी भी प्रजाति को पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है तो उसका प्रभाव पूरी प्रकृति पर पड़ता है। जैसे आप अर्थवॉर्म्स की बात करें तो अर्थवॉर्म्स एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर अगर हम इसी तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स इनका यूज़ करते हैं तो अगर कोई भी एक प्रजाति विलुप्त होती है तो उसका नुकसान पूरी मानवता और प्रकृति को झेलना पड़ता है।
1: हम सभी महसूस कर रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है, तो बढ़ता तापमान और अनियमित मौसम हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहा है?
0: पूरी तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब क्या होता है कि सूखा जो समय है वो ज़्यादा लंबा हो गया है, बिना बारिश के दिन ज़्यादा हो गए हैं,
1: जी
0: उसकी वजह से पेयजल की समस्या भी होती है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो किसानों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फसलों का चक्र बदल गया है कि किस समय उनको बिजाई करनी है, किस समय उनके ग्रेन्स आते हैं, किस समय कटाई करनी है, वो चक्र बदलने से उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कहीं पे बहुत बाढ़ की समस्या होती है, कहीं पे सूखा आता है, तो हर कोई इसकी मार झेल रहा है।
1: आजकल हमारे जीने का तरीका बदल गया है, तो क्या आधुनिक जीवन शैली भी पर्यावरण संकट को बढ़ा रही है? क्या मानते हैं आप?
0: इसका योगदान ज़रूर है। जैसे हमारे कुछ कंज्यूमरिज्म हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का खरीदना हो गया,
1: जी जी
0: यूज़ एंड थ्रो करने की हम
1: कल्चर जो
0: टेंडेंसी
1: आ गई
0: रहती
1: है।
0: है कि इस्तेमाल किया और फेंक दिया, बिजली और पानी का हम एक्स्ट्रा वेस्टेज कर पाते हैं, कई बार खाने में भी वेस्टेज होती है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर भी पर्यावरण संकट को बढ़ाती हैं। बेसिकली ये कि आधुनिकता पर्यावरण का संकट नहीं है, पर असंतुलित रूप से उसका जो यूज़ करना है वो ज़रूर है,
1: जी
0: क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने तो हमें बहुत सारे समाधान भी दिए हैं। अगर आप सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें, तो ये सब इसी पर्यावरण समस्या का समाधान भी विज्ञान ने आधुनिकता ने ही दिया है।
1: तो क्या कर सकता है काम आदमी पर्यावरण संरक्षण में?
0: एक आम आदमी बिल्कुल योगदान कर सकता है, क्योंकि बूंद बूंद जुड़कर ही सागर बनता है। तो सब लोग अगर छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे हम समय पर नल को बंद कर दें, पानी को वेस्ट ना होने दें,
1: जी
0: बिजली बचा के रखें, जो चीज़ जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें, कूड़े को अलग अलग रखें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, पेड़ों को लगाएं, तो ऐसे बहुत सारे प्रयोजन हैं जो अगर आमजन करते हैं तो उससे बहुत सारा फायदा मिलता है। और ये सोचकर कि एक अकेले के करने से क्या होगा, ये
1: जी
0: टेंडेंसी ना रखकर अगर सब लोग करते हैं तो वो
1: जी
0: एक एक मिलकर ही करोड़ों और पूरी जनसंख्या हो जाती है, तो उससे ज़रूर इसमें योगदान होगा।
1: यादव जी, देखिए अगर हम बच्चों को इस बारे में बताते हैं प्रकृति के बारे में या पेड़ पौधों के संरक्षण के बारे में, तो ये भविष्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा।
0: जी बिल्कुल।
1: तो बच्चों में, विद्यार्थियों में कैसे जागरूकता लाई जाए?
0: विद्यार्थियों को बेसिकली सबसे पहले तो अभी तो हमारे जो नए पाठ्यक्रम हैं, जो हमारे नए करिकुलम हैं,
1: जी
0: उनके अंदर भी एनवायरनमेंट का काफ़ी स्पेसिफिकली सब्जेक्ट जो हैं वो नए तरीके से शुरू किए गए हैं। इसके अलावा सेंसिटाइज करने के लिए उनको अलग अलग टूर्स पे लेके जाएं, उनको प्रकृति के साथ में लेके जाएं, बर्ड वॉचिंग जैसे एक्टिविटीज़ के अंदर उनको एंगेज करें, ताकि उनको मतलब वही चीज़ संजोने की उनकी प्रवृत्ति बने, उनको अलग अलग महत्व समझाएं, जैव विविधता के बारे में बताएं कि जैसे फूड चेन है, पूरी एक श्रृंखला चलती है,
1: जी
0: तो एक भी उसका खत्म होना कितना हानिकारक होता है उसके ऊपर उनको बताएं, तो इससे ज़रूर
1: उनमें भी
0: विद्यार्थियों में
1: जागरूकता
0: जागरूकता
1: आएगी।
0: आएगी।
1: अब ये बताएं कि वन विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के मौके पर कौन-कौन से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है?
0: अंडमान तथा निकोबार वन विभाग सारे डिविजन्स और हेडक्वार्टर पर इसको पूरे तरीके से मनाया जाता है। इसमें सारे डिविजन्स मिलके विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण करते हैं, विभिन्न कार्यालय हो गए, विभिन्न स्थान हो गए। इसके अलावा ही आमजन को पौधा वितरण, जैसे सीडलिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
1: जी
0: और अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि सफाई अभियान, बीच क्लीनिंग आयोजित की जाती है, विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे पेंटिंग, ऐसे राइटिंग, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स भी आयोजित किए जाते हैं।
1: इस बार क्या क्या आयोजन है आपके यहाँ
0: ये सब जो मैंने बताया कि वो इस बार भी
1: हो
0: आयोजित
1: रहा
0: किया
1: है?
0: जा रहा है। इसके
1: जी
0: अलावा
1: जी
0: ही जैसे कुछ डिविजन्स में बच्चों को ग्रुप में लेके उनके ट्रैकिंग के लिए, बर्ड वॉचिंग के लिए भी आयोजन किए जाते हैं। जी
1: आम
0: बिल्कुल।
1: नागरिक के लिए क्या है?
0: आम नागरिक के लिए पेड़ों को लगाने की मुहिम में वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं,
1: जी
0: आगे से आगे बढ़ चढ़कर पौधा वितरण की प्रोसेस में जुड़े हैं, और एक ज़्यादा

0: से ज़्यादा पौधे लगाएं।
1: आपने सीडलिंग्स वितरण की बात की, तो ये कौन कौन सी नर्सरी में होगा?
0: ये आमतौर पर हमारे सारे ही डिविजन्स के अंदर हर रेंज के ऊपर एक नर्सरी होती है, एक या एक से ज्यादा, तो सभी नर्सरी से ये है।
1: निःशुल्क प्राप्त होगा?
0: बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होगा।
1: इसके लिए कोई एप्लीकेशन वगैरह देने होंगे?
0: आमतौर पर हमारे वन विभाग की गाड़ी ही एक रूट पकड़ कर पूरे सब लोगों को बताते हुए जाती है, और लोग अपनी इच्छा से जितना चाहें जो जो अलग अलग तरीके की प्रजातियां हैं वो पौधे ले सकते हैं।
1: अंत में, जो इस समय आपको रेडियो के माध्यम सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर?
0: पर्यावरण संरक्षण बेसिकली अब ये सवाल हमारे अस्तित्व का है, मानवता के अस्तित्व का है, कि अगर हम इस समय एक्शन नहीं लेते हैं, इस समय समाधान नहीं ढूंढते हैं, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम इसी सवाल पर मनन करेंगे तो हमें सारे रास्ते जिन पर हमने अभी चर्चा भी की, सारे समाधान को हम यूज़ करके इसमें अपना योगदान दे सकते हैं।
1: तो हम समझते हैं कि जो बातें अभी आपने बताई हैं और जिन श्रोताओं ने इसे सुना है, वो ज़रूर अपने जीवन में इसे अमल में लाएंगे और पर्यावरण संरक्षण में सभी अपना योगदान देंगे। तो विकास यादव जी, आज आप कार्यक्रम में आए, आपने विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे श्री विकास यादव IFS के साथ की गई विश्व पर्यावरण दिवस पर ये विशेष भेंट वार्ता। विश्व पर्यावरण दिवस 2026, इनसे भेंट कर रही थी जयशीला। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान, और इस कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातें करेंगे, पर इस गीत के बाद।

0: अनुराधा और भूपेंद्र की आवाज़ों में अभी आपने एक बार फिर फिल्म का ये गीत सुना। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त हो चला है ब्रेक का।
1: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
2: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
3: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
2: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
3: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
2: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
3: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
2: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
3: अगर बुखार हो तो रक्त की जांच करवाएं।
2: अब हम कर सकते हैं।
3: अब हमें करना होगा।
2: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
3: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
2: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
12: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।
0: ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में।

आज हम बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। पेड़ पौधे केवल हरियाली नहीं देते बल्कि जीवन देते हैं। ये हमें ऑक्सीजन, छाया, फल और वर्षा का आधार प्रदान करते हैं। यदि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तभी प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी। ज़रा विचार करें इस बात पर कि पेड़ लगाना भविष्य में उम्मीद बोने जैसा है जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियाँ पाएंगी। और अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। एक नज़र फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में है ये गाना।

श्रोताओं, कभी कभी ऐसा लगता है प्रकृति हमारे मन के हर भाव को समझती है। कभी हवा बनकर सुकून देती है तो कभी बारिश बनकर धरती की प्यास बुझाती है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण और वनों की कटाई ने पर्यावरण के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। आज आवश्यकता है कि हम जागरूक बने, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, जल का संरक्षण करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और अब आगे बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म कुर्बान का ये गीत है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में।

0: तो श्रोताओं, पर्यावरण दिवस हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब की साझी जिम्मेदारी है। इसी संदेश के साथ अब कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। श्रोताओं, आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि प्रकृति के संरक्षण में अपना सक्रिय योगदान देंगे और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ, हरित और सुंदर बनाएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है, अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
4: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
4: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन

0: दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक

0: संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
0: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष

0: मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
2: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the four-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
1: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
3: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yog worldwide.
3: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए

0: General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under 18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सुगम संगीत, आइए इस कार्यक्रम के तहत आज के फनकार हैं मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह। सुनवा रहे हैं इनकी गाही चंद गजलें। सबसे पहले लीजिए सुनिए भूपेंद्र को, ज़मीर काज़मी का कलाम है।
2: रंग के नगमा कहूँ तुझे, खुशबू ख्याल रंग के नगमा कहूँ तुझे, हैरान हूँ तुझको देख के।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सुगम संगीत, आइए इस कार्यक्रम के तहत आज के फनकार हैं मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह। सुनवा रहे हैं इनकी गाही चंद गजलें। सबसे पहले लीजिए सुनिए भूपेंद्र को, ज़मीर काज़मी का कलाम है।
1: लाल रंग के नगमा कहूँ तुझे, खुशबू ख्याल रंग के नगमा कहूँ तुझे, हैरान हूँ तुझको देख के मैं क्या कहूँ तुझे।

अभी आप मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में चंद गज़लों का लुत्फ़ ले रहे थे। सुगम संगीत के कार्यक्रम के तहत आज के फनकार थे मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं। अब पेश है खिदमत में फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने।

लता मंगेशकर की आवाज में लीजिए सुनिए लफंगे फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने मेरी भाभी फिल्म का ये गीत सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, संगीत था। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे वाईफाई, सुनना मेरी बात।
5: हाँ भाई, बोलने का ना।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाए।

और अब कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए शर्मीली फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। नीरज के बोल हैं एस डी बर्मन का संगीत है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको पंडित जसराज का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनवाने जा रहे हैं। इनके साथ तबले पर नारायण राव इंदोरकर और उस्ताद निजामुद्दीन खान तथा शहनाई पर वी वोरा और हारमोनियम पर कमल मिश्रा ने संगति की है। विलंबित ख्याल एक ताल और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। तो लीजिए सुनिए पंडित जसराज का गाया राग गोरख कल्याण।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
5: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
4: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
5: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
4: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
5: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
4: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
5: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
4: अब हम कर सकते हैं।
5: अब हमें करना होगा।
4: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
5: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
4: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं राग केदारा। विलंबित ख्याल एक ताल और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। बोल है मांजा मोरे पिया।

0: श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित जसराज का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग।
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल पहाड़ नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर

0: से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहां के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके DNA में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सकें।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझे। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
2: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही 4 तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई NGO से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी हैं यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है, और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और

0: हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल्स में कचरा न जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो, क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखे हैं जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लायंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड STP प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 kg तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि ये इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोस्टिंग सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो, मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक

0: प्लास्टिक को मैंने प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबेस में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैंने बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है। इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
3: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
3: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
2: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं अब हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथेनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
3: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
3: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाएं?
3: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
3: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक

0: और ग्रीन इनिशिएटिव जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
1: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल कर इसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो कैंस रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं।

0: बलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर, हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए, कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है, प्लीज।
2: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है। हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स, लिविंग एरियाज, कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होकर हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है, जो दर्शाती है कि आर्मी न खिलिप रागिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
2: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए?
2: जी हाँ, बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: सर, हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए?
2: जी, ये जो मार्क 80 केजी का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 केजी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 केजी वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: Absolutely, 80 kgs वेस्ट, आप सोचिए 80 किलो वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
2: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसमें आप टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच सर।

0: तो इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: तो किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?

0: लेकिन हाँ बिल्कुल वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसी के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। Excellent initiative, I would say.

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा, साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुल्ली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इंडियन आर्मी के।

0: ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे, लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर स्वागत है शो में, प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
1: जय हिंद। आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
0: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
1: देखिए अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
2: बता रहे हैं राइफल मैन दिनेश कुमार।
1: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
2: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
3: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, CCTV रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉय होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहां से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
0: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
3: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं

0: ये अपसाइकल प्रोडक्ट हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
1: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1300 कड़ी।

0: जाए सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
1: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
1: और डोंडी दुहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ

0: वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
1: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है।
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
1: जी,
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
1: जी,
0: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
1: जी,
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
1: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते
1: क्या
0: हैं।
1: बात है।
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है। श्रोता, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है।
1: जी,
0: यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
1: जी
0: यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।

0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
1: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
2: शांत
3: शांत। आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
4: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए,
3: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
4: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
3: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
5: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
3: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
6: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
3: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
7: जी महाराज, बहुत धन्यवाद।
8: महाराज की जय हो,
9: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
3: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
3: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
4: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
3: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
4: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
3: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
4: धन्यवाद महाराज।
0: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
4: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ?
10: मुझे भी नकली मिला।
4: मुझे भी
10: कैसे हो सकता है?
4: क्या क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम
10: कैसे हो सकता है?
4: आया था
10: राजा नकली हीरा दे सकता है?
4: नकली कैसे आ गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया,
10: सभी
4: ने बोला कि नकली है।
1: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।
3: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
4: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले महाराज।
3: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
4: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से कराई थी महाराज, लेकिन पता चला कि

0: सारे हीरे तो नकली है महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
0: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है। बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
2: महाराज की
3: जय!
2: महाराज की
3: जय!
2: महाराज की
3: जय!
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
6: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1300 कड़ी सुन रहे थे। अब एक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनला मैनी रखर हमांग इंगजे तका इनगम मीठे में 438.6 मीटर हेक इंगम 684 किलो हर्ट्स लगतिहांग इन रमांगलनी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्नी निकोबारी प्रोग्राम दांग
2: वानु यहोंग यवांग जकरेल कुई चकुआला कुआव करे अटकाले एन मिनका गया नहीं गम मलेरिया इन वाहन लोटेन गम मलेरिया इन वाले तकिना पही अंतंगम एनोफेलिस जेंग कन मिसो के यही अटिला रेन लेने रंग मि हो एपो हगेन वहाव उनत मजरतानो व यही हारो उनहे के नुत यु गमाक नै तासु पति ही उनत लेने इन कुति कुइनु टैंकी हे किन कु कुइनु भानरी यही यही वतंग वानु य इलेरेन हम तरे चेक कम हाम रे मि हो इन तो मि हो इन गाइ छोल रेन दे लाल गम मलेरिया इन वा हकोला लारे अयु गम मलेरिया लमक इनगम स्टेट हेल्थ सोसाइटी अनगी मिनका तलोनी

0: Tiket nya Onisimas Curtis panja antaeng mana aha gitun ke ka asa ngam terhai yan berita ke turi tak hi telek tan sin nga eh nga tel ngah ang tangamu hek inu re chang rong te kasata ita fan ke ro tela harap salam yan ngai
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं तेलुगु कार्यक्रम।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अनगा 684 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी श्रीविजयपुरम केंद्र नीचे నేటి తెలుగు ప్రసారం ప్రారంభం.

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है, समय मिला लीजिए। इस समय दिन के 12:30 और 1 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: तेज बुखार, पसीना आना, सिर और शरीर में दर्द, उल्टी और कमजोरी,
1: ये मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं।
0: मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
1: समय पर इलाज न मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
0: सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।
1: घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
0: पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
1: अगर बुखार हो तो रक्त की जाँच करवाएं।
0: अब हम कर सकते हैं।
1: अब हमें करना होगा।
0: मलेरिया को मिलकर हराना होगा।
1: स्वस्थ जीवन अपनाएं, मलेरिया को दूर भगाएं।
0: स्टेट हेल्थ सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिवजीपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल

0: अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल का 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today to dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary health care across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution upgrades, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. The Reserve Bank of India has kept interest rates unchanged for the second time in a row in the current financial year, announcing the second bi-monthly monetary policy for the current fiscal. RBI Governor Sanjay Malhotra today said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain short-term lending rate or repo rate at 5.25% with a neutral stance. RBI has lowered GDP growth projection to 6.6% from 6.9% earlier for the current fiscal. RBI also increased CPI inflation target to 5.1% from 4.6% for the current financial year.
3: Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes.
2: Industry body ASSOCHAM has said the RBI's decision to keep the repo rate unchanged at 5.25% will strengthen growth and business sentiments. Secretary General ASSOCHAM Saurabh Sanyal said the decision reflects a balanced approach towards supporting economic growth while ensuring inflation remains within the target range. The centre has granted tax exemption

श्रोता, इस समय आप महफिल्ली कव्वाली कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं परवीन सबा और साथी।

0: ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।
1: व्हाट्सएप माई चॉइस,
2: व्हाट्सएप
1: माई चॉइस।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला संदेश हमने लिया है पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा की पसंद पर ये गीत। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर

0: श्रोताओं, हम आपको बता दें, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने मनपसंद गीत सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें। इस नंबर पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9474234000। अपने पसंद के गीत हमें टाइप कर भेजें और अपना नाम पता साथ में भेज दीजिए।
1: फूल जब मांगते हैं परसों।
0: अब अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। तो सुनवाते हैं आप सभी के पसंद पर बर्दाश्त फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

महाराष्ट्र के नरवेल नलवेश्वर नगर से रहना है तेरे दिल में इस गीत को पसंद किया है पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर और साथी।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं नमूना घर से महिमा, संदीप, श्रुति, लता और मयूर।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक्शन रिप्ले फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता हैं शादीपुर से श्वेता, नेहा, निकिता, रमन्ना, शिवा और उनके साथी।

0: श्रोता, इसी के साथ ही कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम से अब हम इजाजत चाहेंगे।
1: व्हाट्सएप माई चॉइस,
2: व्हाट्सएप
1: माई चॉइस।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Stadium in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. India entered the last four after finishing second in Pool A with 9 points. India's Pragyananda Ramesh Babu remained in contention for the Norway Chess 2026 title after defeating world champion Gukesh Dhamaraju in round 9. The victory took Pragyananda to 15 points, just half a point behind leader Wesley, who has 15.5 points after beating Magnus Carlsen. India Meteorological Department has said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Central Arabian Sea, entire Goa, parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, remaining parts of Tamil Nadu and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,804 rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदम द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार

0: दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 GW डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से CAPF कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
3: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी CAPF में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को

0: लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि यह पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं, लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी

0: नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार द्वीपों के अधिकांश भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा तथा एकांत भागों में भारी वर्षा हुई। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं हैं। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। समुद्र काफी अशांत रहेगा। ऐसी स्थिति में मछुआरों को 8 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:31 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर

नमस्कार दोस्तों, हेलो डियर फ्रेंड। एक ऐसा कार्यक्रम है जहां बातें होंगी दिल से, साझा होंगे सुख दुख के पल और गूंजेंगी आपकी पसंद के मधुर गीतों की स्वर। तो आइए कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भागदौड़ को पीछे छोड़

0: हृदय और दोस्ती अपनत्व और संगीत के इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बन जाए। श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनीता और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हेलो डियर फ्रेंड कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम को और बात करते हैं आज के पहले कॉलर से। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो
0: जी,
1: Hello,
0: मेरी बात जो है नीतू जी से हो रही है।
1: जी
0: नीतू जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।

0: हेलो
1: हेलो जी, मेरी
0: हेलो
1: बात जो है नीतू जी से हो रही है।
0: नमस्कार
1: नीतू जी, कैसी हैं आप?
0: जी, मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं?
1: जी हाँ, हम सब अच्छे हैं। अच्छा नीतू जी, आप श्री विजयपुरम में कहाँ रहती हैं?
0: मैं बडला में रहती हूँ।
1: अच्छा, बडलाइन में रहती हैं। अच्छा नीतू जी, मैं जान सकती हूँ आप क्या करती हैं?
0: मैं जॉब करती हूँ।
1: अच्छा, जॉब करती है। तो जॉब के अलावा और क्या क्या करना आपको पसंद है?
0: मुझे सॉन्ग का बहुत शौक है।
1: अच्छा, गाने सुनने का आपको बहुत शौक है। तो रेडियो
0: जी
1: सुनती हैं
0: जी
1: आप?
0: जी सुनती हूँ मैं।
1: अच्छा, रेडियो सुनती हैं। तो कैसे सुनती हैं आप? रेडियो से सुनती हैं या फिर मोबाइल ऐप से सुनती हैं?
0: मोबाइल ऐप से सुनती हूँ
1: अच्छा,
0: ज्यादातर। हाँ,
1: मोबाइल ऐप से। तो आपको टाइम मिल जाता है क्योंकि आप जॉब भी करती
0: टाइम
1: हैं।
0: निकाल देती हूँ
1: अच्छा,
0: मैं।
1: टाइम निकाल लेती हैं आप। तो
0: जी
1: ज़्यादातर जो समय रहता है रेडियो सुनने का, वो कब होता है?
0: वो मॉर्निंग में ही होता है।
1: अच्छा, मॉर्निंग में ही होता है। तो बताइएगा नीतू जी, आज कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहेंगी?
0: मैं आशिकी फिल्म का तुम आशिक हो, मैं
1: अच्छा
0: शायरी बोलना चाहती हूँ।
1: हाँ जी, बोलिए।
0: किसी को चाहने का कोई बहाना नहीं होता, दिल लगाने का कोई दीवाना नहीं होता। आशिकी सिखाते हैं तो हमसे सीखो, मोहब्बत करने का मतलब किसी उसे नहीं होता। जी
1: जी, बहुत खूब नीतू जी। मतलब आपकी शायरी से लगती है कि आप शायरी भी लिखती है। जी, तो चलिए नीतू जी, सुनवाते हैं आपके पसंद पर ये गीत।
0: थैंक यू।
1: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड,
1: हेलो
0: हेलो जी, मेरी बात जो है दाऊद जी से हो रही है, श्री विजयपुरम
1: जी जी
0: जी। दाऊद
1: जी
0: जी,
1: जी
0: श्री
1: बिल्कुल।
0: विजयपुरम में कहाँ रहते हैं आप?
1: श्री विजयपुरम में मैं फिनिक्स बे में रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, फिनिक्स बे में रहते हैं, तो ये पहली बार जो है आपसे बात हो रही है हमारी हेलो डियर फ्रेंड में। स्वागत है आपका
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत
0: जी।
1: शुक्रिया।
0: दाऊद जी, क्या करते हैं आप वैसे?
1: मैं अभी फिलहाल यहाँ अंडमान में पोस्टेड हूँ एज अकाउंट ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग। 3 साल मुझे पूरे हो गए हैं।
0: अच्छा, 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो कैसा लगा आपको हमारा अंडमान निकोबार?
1: अंडमान से खूबसूरत जगह कोई नहीं है हिंदुस्तान
0: शुक्रिया।
1: में, जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक पूरा इंडिया, तो इससे बेहतर जगह। और यहाँ के लोग उसी तरह खूबसूरत हैं, उसी तरह अच्छे हैं, जिस तरह से ये जगह अच्छी है।
0: जी, तो दाऊद जी, क्या क्या शौक हैं आपके? शौक के बारे में बताइएगा।
1: शौक में मुझे स्पोर्ट्स खेलना पसंद है। मैं बास्केटबॉल वगैरह खेलता हूँ। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा तो ऑफिस में ही गुजर जाता है, तो वर्कआउट वगैरह, योगा करना, वर्कआउट करना, यही फिलहाल तो यही है अभी जो बचा है मेरे पास।
0: अच्छा, हेल्थ
1: बाकी
0: कॉन्शियस
1: मुझे
0: है मतलब।
1: ट्रैवल करना बहुत पसंद
0: जी
1: है।
0: हाँ, स्वस्थ रहना पसंद करते हैं ना
1: हाँ जी, अच्छा,
0: जी।
1: आदमी
0: तो
1: अगर फिट है ना तो सब कुछ है उसके पास,
0: बिल्कुल
1: सेहत है
0: बिल्कुल
1: तो सब कुछ है।
0: जी हाँ बिल्कुल। तो कौन सा गाना है जो आज इस कार्यक्रम में आप सुनना चाहते हैं?
1: मैं जो है थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का हूँ, पुराने गाने मुझे बहुत पसंद हैं। तो अगर आप मोहम्मद रफ़ी का चुरा लिया है तुमने जो दिल को, अगर चला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। जी
0: जी, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है
1: जी जी
0: जी, यादों की बारात फिल्म से।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यादों की बारात में भी।
0: जी, तो दाऊद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू।

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर
1: हेलो
0: फ्रेंड,
1: हेलो
0: हेलो। हाँ जी,
1: हेलो
0: मेरी बात जो है मेघला जी से हो रही है।
1: जी हाँ
0: हाँ जी मेघला जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेघला जी, श्री विजयपुरम में कहाँ रहती हैं आप?
1: जी मेरा घर आरजी की रोड में है
0: अच्छा, जीटी रोड में है। अच्छा मेघला जी, क्या करती हैं आप?
1: जी। मैं एक स्टाफ नर्स हूँ और बम्बू फ्लैट में पोस्टर हूँ।
0: अच्छा, स्टाफ नर्स है। तो ये जो नर्सिंग लाइन है, ये आपने क्या बचपन से ही सोच रखा था कि मुझे इस लाइन में जाना है?
1: जी हाँ, बचपन से ही मुझे शौक था कि मुझे नर्स लाइन में ही जाना है करके, और उसके बाद मैंने जब अप्लाई करा तो मुझे ये कोर्स मिल भी गया।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी जॉब में आकर आपको कितने साल हो रहे हैं?
1: जी अभी 4 इयर्स हो गया।
0: अच्छा, तो आपके घर पर कौन कौन है मेघला जी?
1: मेरे घर पे मेरा एक बेटा है जो कि 3 वर्ष का है, हस्बैंड है और सास ससुर है।
0: अच्छा, तो आप टाइम निकाल पाती हैं अपने फैमिली के लिए, क्योंकि आप जॉब करती हैं, सवेरे
1: जी
0: जाती
1: हाँ
0: है शाम को आती है, तो घर के लिए समय मिल जाता है आपको?
1: जी जी हाँ,
0: जी हाँ, समय
1: निकालना तो
0: निकालना
1: पड़ता
0: ही
1: ही
0: पड़ता
1: है
0: है। बिल्कुल,
1: जी
0: समय निकालना ही पड़ता है। तो आप आज जो है, आपसे बातें हो रही हैं, तो आज कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहती हैं?
1: जी मेरा एक बहुत दिल का नजदीक मुझे बहुत पसंद है, तुझसे नाराज जिंदगी हैरान हूँ मैं।
0: अच्छा, तो आप सच में ज़िंदगी से नाराज़ तो नहीं है ना?
1: जी नहीं, नाराज नहीं हूँ
0: अच्छा, बिल्कुल, नाराज़ भी होने से जो है हमें खुश होना चाहिए ना। जी,
1: जी
0: आज दुख है तो कल खुशी ज़रूर आएंगी, है कि नहीं?
1: वो तो सही बात है
0: जी
1: जी
0: हाँ, तो आपको गाने सुनने और गाना गाने का दोनों का शौक़ है, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है बहुत अच्छी है, जैसे मैं सुन पा
1: ओहो
0: रही हूँ।
1: धन्यवाद मैम।

0: जी मुझे गाना गाने का बहुत शौक है।
1: अच्छा,
0: जब
1: गाना
0: भी
1: गाने।
0: मुझे मतलब खाली समय मिलता है तो मैं गुनगुनाते रहती हूँ। इवन मेरे हॉस्पिटल में अभी दो प्रोग्राम हुआ तो उसमें मैं गाई थी गाना।
1: अच्छा, तो चलिए आप ऐसे ही गुनगुनाते रहिए, खुश रहिएगा। तो सुनवाते हैं आपके पसंद पर ये गीत। कॉल करने जी मैंने आपको कॉल किया और आपने इस हमारे फोन आउट प्रोग्राम में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: जी हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी, नमस्कार जी। मेरी बात जो है मुकेश जी से हो रही है, यूपी।
1: जी मैम, मैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा मुकेश जी, कैसे हैं आप?
1: मैम मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। मैं गाड़ी चलाता हूँ और अभी अभी घर पे आया हूँ, खाना खाया बस।
0: अच्छा, खाना खाने आए हैं आप?
1: जी
0: जी ठीक है, चलिए। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा गाना है मुकेश जी जो आज आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है गोरा और काला। गाने के बोले धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले।
0: अच्छा, तो मुकेश जी क्या करते हैं आप? कहाँ से आ रहे थे अभी गाड़ी चलाकर?
1: मैं अभी गाड़ी चला के आया हूँ और फिर खाना खा के जाऊंगा।
0: अच्छा, मतलब कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए थे आप, कुछ करते हैं आप?
1: हम मैम मेरा गांव जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है और मेरे बिल्कुल जस्ट 3 किलोमीटर उत्तराखंड पड़ता है। उत्तराखंड से आया हूँ अभी मैं।

0: अच्छा, भैया उत्तराखंड से आए हैं।
1: मैं
0: अच्छा, किसी
1: सीमा पर
0: काम।
1: रहता हूँ उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की। जी,
0: अच्छा, तो क्या करते हैं मुकेश जी आप?
1: गाड़ी चलाते हैं मैम।
0: अच्छा, गाड़ी चलाते हैं, मतलब
1: जी
0: सामान
1: जी
0: जो है यहाँ से वहाँ लाना, वो काम जो है
1: जी
0: आप करते हैं। जी
1: और
0: जी
1: गाड़ी
0: जी
1: में हमने FM लगा रखा है मैम, मोबाइल
0: अच्छा
1: ऐप के जरिए आपको प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: अच्छा हमारे प्रोग्राम जो सुनते रहते हैं। अच्छा, तो
1: जी
0: आनंद
1: जी
0: मिलता है आपको हमारे प्रोग्राम सुनकर?
1: जी बड़ा अच्छा दिन करता है मैम आपके जब प्रोग्राम सुनते हैं,
0: जी, तो
1: और
0: चलिए बहुत
1: सबसे
0: बहुत
1: अच्छा यही
0: हम
1: प्रोग्राम लगता है मैम, क्योंकि
0: जी।
1: इसमें दूर दराज से जो लोगों की कॉल आती है ना, वो अपने बारे में बताते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपको यहाँ का मौसम कैसा है, ये बहुत अच्छे अच्छे जानकारी मिल जाती है मैम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वही है कि रेडियो के ज़रिए जो है आप सारी जगहों के बारे में जो है जान लेते हैं ना,
1: जी
0: मौसम
1: मैम
0: कैसा
1: जी
0: चल रहा है,
1: बिल्कुल
0: क्या है।
1: जी
0: तो चलिए, आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, आप जल्दी जल्दी जो है भोजन करें। तो सुनवाते हैं हम गोरा और काला फिल्म से ये गीत।
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो जी
0: हेलो जी, नमस्कार। मेरी बात जो है आसिफ जी से हो रही है।
1: जी जी
0: आसिफ जी, सूरत में रहते हैं आप?
1: जी सूरत में रहते हैं
0: अच्छा, क्या करते हैं आसिफ जी, कैसे हैं आप?
1: हम तो ठीक मैडम जी। हम यहाँ सूरत में काम करते हैं सिलाई का।
0: अच्छा, सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं। घर पर कौन कौन है आपके?
1: घर पे हैं भाई बहन भाभी सब लोग हैं।
0: अच्छा, सभी है। तो आप जो है सिलाई कढ़ाई का काम, किस किस तरह के कपड़े जो हैं आप सी लेते हैं?
1: ये हम ये बच्चों का काम करते हैं, फ्रॉक
0: अच्छा, बच्चों के कपड़े ज़्यादा सीते
1: वगैरह
0: हैं?
1: बनता सूट ऐसा।
0: अच्छा, जी। तो बताइएगा, अपने कामकाज के बारे में बताइएगा, और कितने लोग हैं आपके साथ? आप अकेले हैं या आपके साथ और भी साथी हैं काम करने के लिए?
1: जी हमारे साथ में हैं भाई लोग हैं, बिहार के हैं भी और यूपी के हैं, बंगाल से हैं, बहुत जगह से हैं।
0: अच्छा, कुल मिलाकर कितने
1: हाँ
0: लोग हैं?
1: यहाँ तो स्टाफ लोग हैं 12-13 लोग और नीचे में भी हैं
0: अच्छा, जो
1: ऐसा।
0: मतलब सभी जो है, सब मिलजुल कर, सभी साथियों के
1: हाँ
0: साथ आप पे।
1: इसी में पैकिंग भी होता है, सब चीज़ इसमें ही होता है, कंपनी
0: अच्छा
1: है।
0: अच्छा पैकिंग भी होता है, मतलब सिलाई
1: जी
0: कढ़ाई का काम करके आप पैकिंग वगैरह जो है वो भी
1: हाँ
0: जो है
1: सब कुछ
0: करवाते?
1: होता है, ऑनलाइन का है ना
0: हाँ
1: मैडम
0: हाँ
1: जी।
0: हाँ हाँ जी जी वो तो मैंने सुना है कि सूरत में बहुत ही अच्छी अच्छी और बहुत ही सुंदर
1: हाँ
0: सुंदर सिलाई कढ़ाई का काम
1: जी
0: होता है, बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते
1: हाँ
0: हैं। बिल्कुल।
1: जी
0: तो चलिए आसिफ जी, आज कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: हाँ बरसात का है गाना वो।
0: अच्छा, बरसात, बरसात फिल्म से जो है,
1: जी
0: कुमार सानू की आवाज़ में आप
1: जी
0: जो है, ये बरसात की दिनाएं। तो आपके
1: जी
0: वहाँ
1: जी
0: बरसात के दिन आए हैं?
1: जी यही चीज़ तो कह रहे हैं कि हम गाने के सहारे सुन
0: अच्छा, आप
1: लेते
0: सोच,
1: हैं।
0: अच्छा आपको लगता है कि शायद ये गाना सुन ले तो कहीं ना कहीं जो है आज
1: हो
0: कल या परसों में बरसात हो ही जाए, है ना?
1: ही जाए
0: जी
1: जी
0: हाँ
1: मैडम जी।
0: जी, हम प्रार्थना करते हैं सूरत में जल्द ही बारिश हो, मानसून
1: बहुत
0: जी
1: गर्मी यहाँ तो
0: जल्द
1: बहुत
0: ही
1: गर्मी सूरत
0: मानसून
1: में
0: दस्तक दे आपके शहर में भी।
1: जी।
0: जी
1: हम थोड़ा परिचय बताना चाहते हैं।
0: हाँ जी।
1: हमारा गांव है दक्षिण गांव, सुकुल बाजार, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास। अभी हम सूरत में हैं मैडम
0: अच्छा,
1: जी।
0: आप सूरत में काम करते हैं और आपका
1: जी
0: अपना घर जो है वो जो है यूपी
1: जी यूपी से
0: जी, ठीक है, चलिए।
1: एक भाई है हमारे, बात कर लेते थोड़ा सा, वो भी साथ में खूब रेडियो सुनते हैं।
0: अच्छा, वो भी खूब रेडियो सुनते हैं,
1: तो
0: चलिए,
1: हाँ
0: सभी
1: थोड़ा
0: मतलब
1: सा
0: रेडियो के शौकीन है वहाँ पर।
1: जी,
0: जी
1: ऑनलाइन सुनते हैं ना आपका रेडियो,
0: हाँ जी, हाँ जी
1: थोड़ा बात कर लीजिए मैडम जी।
0: हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: मैडम जी।
0: जी।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: जी आप भी रेडियो सुनते हैं
1: जी,
0: आपके?
1: मैं बहुत दिनों से, लगभग 15 साल से सोता है आपका,
0: अच्छा, तो
1: और आई
0: ऐप में
1: पीरियड
0: सुनते
1: से ही
0: होंगे
1: सुन
0: ना
1: रहा
0: आप?
1: है। जी।
0: अच्छा, ऐप में सुनते हैं। तो कौन कौन सा कार्यक्रम है जो बहुत अच्छा लगता है आपको?
1: जो भी मैम कार्यक्रम हमारा, हेलो फरमाई सखी सहेली। जी।
0: जी, तो चलिए
1: सभी
0: ऐसे ही
1: प्रोग्राम
0: आप
1: सुनते हैं।
0: जो है कार्यक्रम सुनते रहिएगा।
1: जी मैम।
0: जी, तो आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, सुनवाते हैं आप सभी
1: जी
0: की
1: जी आप
0: पसंद पर
1: सभी मैम।
0: बरसात फिल्म का ये
1: जी
0: गीत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: 1-800-944-4454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: श्रोताओं, हेलो डियर फ्रेंड कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड,
3: हेलो
2: हेलो, मेरी बात जो है शमा जी से हो रही है।
3: हाँ जी,
2: शमा जी कैसी हैं आप?
3: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
2: जी हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। शमा जी, श्री विजयपुरम में रहती हैं आप?
3: हाँ जी।
2: अच्छा, हम जान सकते हैं कहाँ पर रहती हैं आप?
3: जी, मैं डॉलीगंज में रहती हूँ।
2: अच्छा, डॉलीगंज में रहती है। तो बताइएगा शमा जी, क्या करती हैं वैसे आप?
3: मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और मैं एक छोटा सा सैलून है डॉलीगंज में।
2: अच्छा, आप किस तरह का मेकअप मतलब करवाती हैं, जैसे नॉर्मल ब्राइडल मेकअप?
3: मैं हर तरह की मेकअप करती हूँ, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ।
2: अच्छा, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट।
3: अभी रिसेंटली मैंने एयरब्रश मेकअप भी किया है। जी,
2: तो आप जो है
3: मेकअप करती हूँ, मेकअप का शौक है मुझे।
2: अच्छा, मेकअप का शौक है आपको? जी हाँ, तो आप जो है नई नई तरीके से किस तरह से जो है खूब सजाया जा सकता है, किस तरह से सुंदर दिखाया जा सकता है, उस तरह की जो है आप कला सीख कर रखी हुई है ना?
3: हाँ जी
2: जी हाँ। तो शमा जी, वैसे और क्या क्या शौक है? चलिए, आप एक मेकअप आर्टिस्ट है, आपको मेकअप का शौक है, मेकअप करने का शौक है, वैसे और क्या क्या शौक है आपके? खाली समय में क्या करती हैं आप?
3: मुझे नेचर फोटोग्राफी बहुत पसंद है।
2: अच्छा,
3: नेचर के साथ वक्त बिताना पसंद है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, नेचर के साथ
3: सीखना पसंद है।
2: तो फिर तो आप खूब घूमती होंगी है ना?
3: हाँ जी, बहुत घूमती
2: हूँ। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ अब तक आप घूम चुकी हैं, कितने बीचेस जा चुकी हैं आप?
3: ऑलमोस्ट सारे बीचेस जा चुकी हूँ। जब काम नहीं होता है तो मैं बीचेस में ही रहती हूँ।
2: तो और क्या इरादा है कि आइलैंड से बाहर जाना है आपको, घूमना है, कुछ सोच कर रखा है आपने?
3: बाहर जाना होता है बट मैं ज्यादा कोर्स के लिए जाती हूँ, मेरा ध्यान कोर्स के तरफ ही ज्यादा है, उसी अवसर पर मैं घूम भी लेती हूँ।
2: तो चलिए, आप ऐसे ही घूमती रहिए और खुश रहिएगा। तो बताइए, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहती हैं?
3: पुराने गाने तो बहुत सारे मुझे पसंद है, बट एक गाना मैंने सोचा है, तेरे दर पर सनम चले आए।
2: अच्छा, तेरी दर पर सनम चले आए, फिर तेरी कहानी याद आई, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है कुमार सानू की आवाज़ में।
3: जी,
2: तो ये गीत आप किन के साथ सुनना चाहेंगे?
3: मैं अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ सुनना चाहूँगी।
2: अच्छा, फैमिली के साथ जो है इस गीत का आप लुत्फ लेना चाहेंगी। तो चलिए शमा जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, सुनिएगा ये गीत।
3: जी जी, थैंक यू अनीता जी,
2: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: जय माता दी।
0: हेलो डियर फ्रेंड, जय माता दी। जी हाँ, मेरी बात जो है पूरन वर्मा जी से हो रही है।
1: जी मैडम, मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमहल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी पूरन वर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ कैसा
0: जी हाँ, बहुत दिन
1: मौसम
0: बाद
1: हो
0: जो
1: रहा
0: है
1: है।
0: आपसे बात हो रही है।
1: जी मैडम, कहाँ बहुत दिनों के बाद में आया मेरे पास कॉल, बहुत खुशी हो रही है मैडम।
0: जी बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन बहुत दिन बाद जब बात होती है ना तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है कि
1: हाँ
0: नहीं?
1: जी, हाँ जी मैडम, ये तो बात है, बहुत
0: इसलिए
1: दिनों के
0: बीच बीच
1: बाद
0: में
1: बात।
0: अंतराल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए
1: जी
0: ना।
1: जी
0: जी हाँ,
1: बहुत
0: जब
1: दिनों
0: हम
1: के बाद
0: बात
1: बात है मैडम, बात हो चाहे अगर बहुत दिनों के बाद में किसी से मुलाकात हो, तो अगर बहुत दिनों में होती है तो उसका आनंद अलग ही होता है मैडम।
0: बिल्कुल, बातों की तो अलग ही बात है। तो पूरन जी, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गाना है जो आप सुनेंगे?
1: जी मैडम, मैं आज सुनना चाहूंगा, क्योंकि वो सुमन कल्याणपुर हमारे बीच में नहीं रही, तो उनकी आवाज में आपके पास कोई गाना है तो वो मैं उनकी आवाज में
0: जी
1: सुनना
0: जी
1: चाहूंगा मैडम ये गाना।
0: जी साथ ही

0: फिल्म से मेरा प्यार भी तू है, इस गीत में गायकी में इनका साथ दिया है मुकेश जी ने, तो सुनवा दे ये गीत आपको।
1: जी मैडम, आप इजाजत दे, मैं कुछ मित्रों को याद कर लूँ।
0: बेशक।
1: जी मैडम, सबसे पहले तो आप है और आपके साथ जो मैडम बैठी हुई है आपके साथ, तो उनके लिए भी रहेगा ये गाना।
0: जी हाँ,
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, पूर्णिमा मैडम है विजयपुरम से, और धर्मवीर जी है, और जितने कॉलर आपके आकाशवाणी विजयपुरम के चाहने वाले से, तो आपके लिए सुनाना चाहता मैडम ये गाना।
0: जी सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत, सुनिएगा।
1: थैंक यू मैडम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: हेलो डियर फ्रेंड, दीदी को राधे राधे।
0: जी। राधे राधे। केसरी सिंह राजपूत, एमपी से।
1: जी,
0: केसरी जी,
1: केसरी सिंह
0: कैसे हैं आप?
1: राजपूत, बैरसिया, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश।

0: जी केसरी जी, फिर आपके घर पर सब कुशल मंगल?
1: हाँ, सब कुशल मंगल हैं दीदी। और मानसून भी आ गए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की, और हवाएं चल रही हैं। कुछ गर्मियों से
0: अच्छा,
1: राहत मिली है।
0: थोड़ी गर्मियों से जो है राहत मिली है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: चलिएगा, आप सभी जो है वो प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से बारिश हो, और बारिश जो है दस्तक दे चुकी है। तो
1: हाँ, धीरे
0: चलिए,
1: धीरे
0: गर्मी
1: एक दो हफ्ते में
0: जी।
1: बिल्कुल मानसून आ ही जाएगा उसमें।
0: तो चलिएगा, बारिश का भी खूब लुत्फ़ उठाइएगा। तो बताइएगा
1: जी
0: केसरी जी, कौन सा गीत है जो इस कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे?
1: जी आजाद देश के गुलाम मूवी का नाम है, और गाने के बोले सारे सिकवे गिले भुला के कहो, और दो तीन मित्रों को याद करना चाहूंगा।
0: जी ज़रूर।
1: राम बाबू शर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी, मांगीलाल चंदेल जी, भगवान सिंह परमार जी, अविनाश जी, जितने भी लाइव सुनता है, और आपके लिए।
0: धन्यवाद। तो सुनवाते हैं आपके पसंद पर ये गीत।
1: जी थैंक यू।
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हेलो डियर फ्रेंड कार्यक्रम से अब हम इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।
1: हेलो डियर फ्रेंड।

तो अभी आप हमारा लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। समय मिला लीजिए दोपहर के 3:30 और 34 सेकंड हुए हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, पुराने जमाने के कुछ चुनिंदा गीत ऐसे होते हैं जिसे हम चाहकर भी नहीं भुला सकते। ऐसे ही कुछ भुलाए नहीं भूलने वाले गीतों की कड़ी के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित फिल्म मन की आंखें 1970 में पुष्पा पिक्चर्स के बैनर तले बनकर तैयार हुई थी, जिसमें कलाकार थे वहीदा रहमान, धर्मेंद्र, सुजीत कुमार, मनमोहन कृष्ण और ललिता पवार। गीतों की रचनाएं की साहिर लुधियानवी ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत।

हेमंत कुमार की आवाज में अब हम आपको सुनवा रहे हैं 16वां साल फिल्म का एक गीत। 1958 में चंदा फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन किया राज खोसला ने। आपराधिक पृष्ठभूमि पर बने इस फिल्म के निर्माता थे चंद्रकांत देसाई। फिल्म में देवानंद, वहीदा रहमान, विपिन गुप्ता, टुनटुन और सुंदर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। मजरू सुल्तानपुरी ने गीतों की रचनाएं की। सचिन देवबर्मन का संगीत है। लीजिए सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म जब जब फूल खिले से लिया है। लाइमलाइट बैनर के तले 1965 में बनी इस फिल्म के निर्देशक थे सूरज प्रकाश। फिल्म में अपने अभिनय क्षमता का परिचय दिया नंदा, शशि कपूर, आगा, शम्मी, भारत भूषण, भल्ला आदि कलाकारों ने। गीतकार आनंद बख्शी तथा संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला, दुर्गा खोटे, निगार, सुल्ताना, मुराद, जॉनी वॉकर आदि कलाकारों को लेकर निर्माता निर्देशक के आसिफ ने स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के बैनर तले एक फिल्म बनाई, मुगले आजम, जो 1960 में रिलीज हुई थी। जहां एक ओर फिल्म के कलाकारों की वाहवाही हुई, वहीं शकील बदायनी के लिखे गीत भी लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हुए। नौशाद के संगीत की बात ही कुछ और है। एक खास बात आपको बता दें, इस फिल्म के संवाद यानी डायलॉग चार लेखकों अमा खान, एहसान रिजवी, कमाल अमरोही और वजाहत मिर्जा ने मिलकर लिखे। अब इस बहुचर्चित फिल्म मुगले आजम का एक बहुत ही प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आपके लिए।

श्रोताओं, अब एक गीत 1977 में बनी फिल्म फरिश्ता या कातिल से। इस वेशभूषा प्रधान फिल्म में शशि कपूर, रेखा, प्रेमनाथ, बिंदु, जॉनी वॉकर, ओम शिवपुरी, उत्पल दत्त और सुजीत कुमार ने अभिनय की जादू बिखेरी है। पारस मनी चित्रशाला के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक हैं एसएम अब्बास। अनजान के गीतों को कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सजाया है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश को।

श्रोताओं, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने एबीएम प्रोडक्शंस के बैनर तले 1961 में सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक फिल्म बनाई थी, छाया। फिल्म में सुनील दत्त, आशा पारेख, निरूपा राय, नासिर हुसैन, ललिता पवार, मोहन चोटी, आसित सेन मुख्य कलाकार थे। शब्दों को गीतों में पिरोया राजेंद्र कृष्ण ने और गीतों को धुनों से सजाया सलील चौधरी ने। तलत महमूद की आवाज़ में छाया फिल्म का ये गीत आपके दिलो दिमाग में भी ज़रूर हलचल मचाएगा। लीजिए सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, पुराने गीतों की कोई कमी नहीं, पर जरूरत है आप जैसे श्रोताओं की, जो इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हैं। आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप यूं ही गाते रहो कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मीना प्रकाश।
1: विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारी इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का।

आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूं बस, मां ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि मां ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं, शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर। शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है, और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई है पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा, और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर, कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है, और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूं और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना, नजरिया

बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो, तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ, मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा, तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है। अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना, आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था, बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे।

तुम मुझे पहले बताओ तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना? संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है? संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा, और माँ से नहीं मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में? संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने यह सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें

उन्हें सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना, तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी। मैंने कहा तो था तुमसे, माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा। भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी, आप इतनी सुबह? हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो, तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

एक दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम

रही हूँ, पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी। खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए, इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल। शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी। और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी। चंदेरी की साड़ी, मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से एक गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। श्रोताओं, हमारी आज की दूसरी सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: வணக்கம் அன்பு நேயர்களே, ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் படைக்கும் தமிழமுதம்.

अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए बंगला कार्यक्रम।

আজকের বাংলা অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। সঙ্গে ছিলাম আপনাদের প্রিয় বন্ধু সুজাতা। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। শুভরাত্রি। अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जगत कार्यक्रम में मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अनमोल विचार के साथ, और विचार है, माली चाहे किसी पौधे को 100 घड़े पानी से क्यों ना सींच दे, लेकिन उस पौधे पर फल केवल अपने सही मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में कभी उतावले मत बनिए, अपनी मेहनत पूरी रखिए और सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतज़ार कीजिए। किसान भाइयों, हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर काम में समय लगता है। आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा प्रयास करके सफलता नहीं पा सकते। आपको हर दिन लगातार मेहनत करनी होगी और सब्र रखना होगा। जब सही समय आएगा तो आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप समझ ही गए होंगे कि मेहनत के साथ साथ धैर्य का होना भी बहुत महत्व रखता है। इस सुंदर सुविचार के बाद अब बारी है प्रश्न की। प्रश्न

0: यूरिया में लगभग कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? प्रश्न एक बार फिर दोहराते हैं, यूरिया में लगभग कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? किसान साथियों, इस प्रश्न का जवाब आप सोचते रहिए, हम इसका सही उत्तर आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरी मिर्च की खेती भारत में एक बेहद मुनाफा देने वाली और लोकप्रिय खेती है, तो आइए आपको सुनवाते हैं श्रीमती रेखा मनोज से की गई बातचीत।
4: मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: नमस्कार
4: मैडम। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ तक मिर्च का सवाल है, बहुत सारे किसान जैसे मैंने कहा यहाँ पर खेती करते हैं
5: जी।
4: तब भी इसकी जो संभावनाएं अगर हम जानना चाहें तो वो कितनी है यहाँ पर?
5: हमारे किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे इन द्वीप समूह में मिर्च की खेती हम बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। वजह यह है कि यहाँ जो द्वीपों में दक्षिण पश्चिम मानसून तथा जो उत्तर पूर्वी मानसून, दोनों ही वर्षा हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, और इस वजह से यहाँ की जलवायु एवं यहाँ की मिट्टी दोनों ही मिर्च की खेत के लिए बहुत ही अति उपयुक्त है। और हमारे इन द्वीपों में मिर्च की जो खेती करते हैं किसान भाई, इसे ज़्यादातर मसाले के रूप में या कुछ सब्जियों के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। यूं तो मिर्चियों को काफ़ी तरह से यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में विटामिन सी एवं एसिड्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ही उपयोगी हैं। तो हमारे किसान भाई इसे अच्छी तरह से इन द्वीपों में
4: कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि मुख्य तौर पर जो मसाले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो मिर्च में एक शिमला मिर्च भी आती है, तो आजकल मेरे ख्याल से वो भी किसान भाई उगा रहे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के तहत।
5: जी, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के तहत उसको किया जाता है, क्योंकि उसके लिए जो उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है, उसमें थोड़ा सा ठंड की ज्यादा जरूरत होती है, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम टेम्परेचर को उसमें कंट्रोल कर सकते हैं।
4: जी, तो मैडम आज हम तो बात कर रहे हैं जो आम मिर्च है उसके बारे में
5: जी।
4: तो किसी भी फसल से अगर अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो किस्में अच्छी होनी चाहिए? तो हमारे इन द्वीपों के लिए उपयुक्त किस्में कौन कौन सी?
5: हमारे इन द्वीपों में यूं तो किसानों को बीज के लिए जैसे कृषि विभाग काफ़ी सहायता करता है, बीज समय समय पर अच्छी बीज जो उपचारित बीज होती है इसे मंगा कर देते हैं किसान भाई। ऐसे भी कुछ बीज का जो पिछले साल किए रहते हैं उसे वो बचा कर रखते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। किस्मों में देखा जाए तो सबसे अच्छा ज्वालामुखी है, पूसा सदाबहार है, पूसा ज्वाला है और पंथ वन, ये किस्में यहाँ पर लाभप्रद रूप से किया जा सकता है।
4: तो ये किस्में आपके डिपो में या स्थानीय तौर पर मार्केट में उपलब्ध रहती है?
5: जी बिल्कुल, ये हमारे डिपोज में यही किस्में जो यहाँ पर अच्छी तरह से होता है, यहाँ पर कैरी भी इन किस्मों को कहते हैं कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कर सकते हैं, तो इसे हम डिपार्टमेंट के थ्रू किसानों को मंगा कर देते हैं।
4: अच्छी बात है। तो मिर्च एक ऐसी फसल है जिसमें पहले पौध तैयार की जाती है और फिर उसके बाद उसकी रोपाई की जाती है।
5: बिल्कुल,
4: तो नर्सरी प्रबंधन बहुत अहम होता है।
5: जी,
4: क्या बताना चाहेंगे?
5: सबसे पहले तो नर्सरी प्रबंधन, ये नर्सरी की तैयारी करने से पहले हम बीज का उपचार करना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी उसमें रोग हो या कीटाणु हो जो बीज में पाया जाता है, जो कि आगे पौध में ना आए, इसीलिए बीज उपचार भी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में नर्सरी के लिए हमें अगर एक हेक्टेयर जमीन में अपना मिर्च की फसल को लेना है तो किसान भाई 100 वर्ग मीटर यानी कि 100 स्क्वायर मीटर की जो ज़मीन है इतनी काफ़ी है नर्सरी एक हेक्टेयर के लिए। जी बिल्कुल, और जो उसमें है करना ये है कि उसे अच्छी तरह से जोत ले और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद और नीम

0: कली जो होता है
1: हाँ
0: उसका जो खाद मिलता है वो 10 kg वो उस नर्सरी एरिया के लिए यानी 100 स्क्वायर मीटर
1: मीटर
0: के
1: के
0: लिए
1: लिए।
0: काफ़ी होता है। इसे
1: अच्छा
0: उसमें मिला लें और इसे अच्छी तरह से इरिगेशन कर लें यानी कि सिंचाई
1: पानी
0: कर
1: दे दे।
0: लें, पानी दे दें, और इसके बाद इसमें जो उपचारित बीज होता है ये उपचारित बीज इसमें बो देना चाहिए यानी कि
1: अच्छा
0: ये कतार में बो देना चाहिए। और इसके लिए हम नर्सरी में एक बेड की तैयारी कर लेते हैं,
1: अच्छा उठी हुई क्यारी
0: उठी हुई
1: बनाते
0: क्यारी
1: हैं।
0: बनाती है जो 1 फीट चौड़ा होता है और लंबाई तो आप अपने हिसाब से किसान भाइयों की जो खेत होती है उसके हिसाब से वो रख
1: रख
0: कर
1: सकते
0: सकते हैं
1: हैं।
0: जी। और उसे ऊंची हुई बेड इतनी कि वो 6 इंच की उठी हो और साइड में ड्रेनेज का भी यानी
1: अच्छा
0: कि
1: पानी
0: जल
1: निकलने
0: निकास
1: की
0: का
1: व्यवस्था।
0: व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
1: अच्छा
0: और इसमें जो बीज उपचारित किया हुआ बीज हो उसे डाल देना है।
1: अच्छा
0: अब बीज उपचार की भी एक अलग जो
1: विधि
0: तरीका
1: है।
0: है वो किसान भाई अगर अपना ले तो ज़्यादा अच्छा है।
1: अच्छा उस बारे में
0: इसमें
1: जरा बता दीजिए। हाँ
0: जी इसमें ये है कि अभी तो हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक मतलब जैविक खेती की ओर हम किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो यूं तो दूसरे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है सीड ट्रीटमेंट के लिए जो यूज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अगर जैविक में जाए तो सूडोमोनास ये भी कृषि विभाग द्वारा किसानों को मुहैया कराया जाता है। तो इसमें आप सूडोमोनास का अगर 500 ग्राम एक पैकेट अगर ले ले ये 1 kg बीज
1: बीज
0: के
1: के
0: लिए
1: लिए।
0: जो नर्सरी में हम डालेंगे वो 1 kg बीज के लिए काफ़ी है। उसे 1.5 लीटर पानी में आप घोल बना लें और बीज को उसमें अच्छे से मिला लें और उसे छाया में ध्यान देना चाहिए कि धूप में ना सुखाए,
1: जी हाँ
0: छाया में उसे सुखा लें, करीब एक दिन सुखा लें और अगले दिन इसकी रोपाई कर सकते हैं
1: अच्छा सूडोमोनास का जो पैकेट होता है वो
0: जी।
1: कृषि
0: वो
1: विभाग
0: कृषि विभाग
1: के
0: में उपलब्ध
1: उपलब्ध
0: है
1: रहता है।
0: जी
1: अच्छी बात
0: बिल्कुल।
1: है। और अगर केमिकल से या रसायन से करना
0: हाँ
1: चाहें तो।
0: केमिकल्स या रसायन से करना चाहते हैं तो थिरम एक सी ट्रीटमेंट का जो दवा होता
1: केमिकल है
0: है
1: जी।
0: केमिकल
1: हाँ
0: होता है ये अवेलेबल है, ये भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर बीज में उसे, और ये ध्यान दें कि बीज को ज़्यादा जोर से ना उसमें
1: जी।
0: मिलाएं ताकि
1: हाँ
0: उसके मतलब उसका छिलका वगैरह ना निकले, तो आराम से मिलाकर उसे सुखाकर छाया में सुखाकर आप इस्तेमाल कर सकते
1: कोशिश ये
0: हैं।
1: करनी चाहिए कि बीज के ऊपर एक परत बन जाए तो सबसे
0: हाँ
1: अच्छी
0: जी
1: बात है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: इसको जब नर्सरी में किसान भाई कतारों में डालेंगे
0: जी।
1: तो कतार से कतार के बीच की दूरी कुछ देखने की ज़रूरत
0: कतार
1: है।
0: से कतार की नर्सरी में तो ज़रूरत नहीं है, जब मेन
1: हाँ
0: फील्ड में होगी तब
1: तब
0: इसकी
1: उस
0: ज़रूरत है
1: अच्छी बात है।
0: जी।
1: तो नर्सरी में कितने दिन के पौध हो जाने चाहिए कि फिर उसको निकाल कर मुख्य
0: हाँ
1: खेत
0: छह
1: में।
0: हफ्ते के पौध में ये तैयार हो जाता है, तो
1: अच्छा
0: आप ऐसे कर सकते हैं नर्सरी में किसान भाई जो है नारियल के बीज बो देने के बाद में आप उसे छाया देने के लिए नारियल के पत्ते से या केले के पत्ते से उसके ऊपर में ढक लें और
1: अच्छा
0: उसके ऊपर से ही सिंचाई करें, सिंचाई करते रहें, एक दिन के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं। और 6 हफ्ते में आपको जब पौध तैयार हो जाता है और जैसे ही पौध जर्मिनेट होता है यानी निकल
1: अंकुरित
0: जाता है
1: होता है।
0: अंकुरित हो जाता है तब आपको पत्तों को हटा देना चाहिए, और जब 6 हफ्ते में आपका पौध तैयार हो जाएगा जब मेन फील्ड में यानी कि मुख्य खेत में आपको उसे
1: रोपाई कर
0: रोपाई
1: सकते
0: कर सकते
1: हैं।
0: हैं
1: तो मुख्य खेत की तैयारी किसान भाई कैसे करें।
0: जी। मुख्य खेत की तैयारी वैसे ही सड़े गोबर की खाद उसमें भी मिलानी चाहिए, अच्छे से 5 से 6 बार आप जुताई कर ले, खेत की जुताई कर ले, और उसमें भी सड़े हुए गोबर की खाद करीब 25 टन जो मात्रा होती है 1 हेक्टेयर के लिए इतनी मात्रा की ज़रूरत होती है सड़े गोबर की खाद, या आजकल वर्मी कंपोस्ट मिलता है तो ये आप उसमें मिला सकते हैं, मेन मिलाकर अच्छे से कर ले। और फिर इसमें भी आप देखना चाहिए कि क्योंकि यूँ तो हमारे इन द्वीप समूह में काफ़ी वर्षा होती है तो आपको जल निकास की सुविधा ज़रूर कर लेनी
1: अच्छा
0: चाहिए,
1: निचली ज़मीन में मुश्किल हो जाएगा
0: मुश्किल होगा
1: बारिश
0: तो
1: के
0: निचली जमीन
1: दौरान।
0: में भी कर सकते हैं आप उसे थोड़ा सा उठा ले, बेड फॉर्म
1: हाँ
0: कर ले और इसके बाद आप उसमें जो पौध को है हम
1: रोप
0: रोपाई कर
1: सकते
0: सकते हैं।
1: हैं। तो इस मुख्य खेत में क्या डिस्टेंस होना चाहिए कतार से
0: हाँ
1: कतार
0: मुख्य
1: या
0: खेत
1: पौधों से पौधों के
0: में
1: बीच।
0: कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 फीट की दूरी रख लें और जो पौध से पौध है वो 1.5 फीट की दूरी पे आप
1: रोपाई कर
0: रोपाई कर
1: सकते
0: सकते हैं
1: हैं। अब नर्सरी से जब पौधों को निकालते
0: जी।
1: हैं तब भी बहुत मेरे ख्याल से ध्यान देना पड़ता होगा।
0: जी बिल्कुल उसमें ये ध्यान देना है कि आप बहुत पहले तो आप अच्छे से सिंचाई कर लें ताकि पौधे आराम से निकल जाए
1: मिट्टी
0: उसमें
1: थोड़ा
0: से,
1: सा
0: मिट्टी
1: गीली हो जाए,
0: गीली हो
1: नरम हो
0: जाए।
1: जाए जमीन।
0: आजकल तो आप देखते हैं पॉट ट्रे भी मिलता है जो नर्सरी जो नहीं कर सकते हैं पॉट ट्रेज आता है जिसमें आप एक एक बीज एक एक छोटे से ट्रे में डाल सकते हैं, ग्लास जैसा होता है कंटेनर तो उसमें डाल सकते हैं एंड उसको आप एक साथ अपने मेन फील्ड में ले जाकर इसका इसमें से आराम से निकाल सकते हैं। इसमें क्या है मिट्टी भी साथ में थोड़ी सी मिट्टी भी पौध में आपको मिल जाती है,
1: पौध जमने में आसानी होती
0: आसानी
1: है।
0: होती है, उसे जो ट्रांसप्लांटिंग शॉक कहते हैं ये कम होता है।
1: अच्छी बात
0: एंड
1: है।
0: दूसरा

0: और एक है कि आप जब रुपाई करने से पहले अगर आपने सीड ट्रीटमेंट ना किया हो, अगर बीजोपचार ना किया हो, तो जो पौध होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, उनकी भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: उसे भी आप ये सुडोमोनास की जो 500 ग्राम की जो एक पैकेट में आता है, इसे लेकर आप घोल बना लें। लेकिन इस बार आप पानी की मात्रा अधिक रखें, यानी
1: अच्छा
0: कि 2 से 3 लीटर पानी में आप इसकी घोल बना लें और इससे पौधों को उसमें डुबा लें।
1: अच्छा उनकी जड़ों को डुबा
0: हाँ,
1: लें।
0: जड़ों को डुबा लें, आधे घंटे तक आप डुबा कर रखें और उसके बाद आप उसका
1: रुपाई
0: रोपाई
1: करना।
0: करें।
1: चलिए, मुख्य खेत में रुपाई कर देने के बाद जब पौध जमने लगती है
0: जी
1: तो मुख्य समस्या एक आती है कि खरपतवार निकलते हैं
0: जी
1: और खाद भी किसानों को देने
0: देने
1: पड़ते
0: पड़ते
1: हैं,
0: हैं।
1: तो क्या
0: तो
1: सलाह है
0: इसमें
1: आपकी?
0: खाद, तो अगर आप जैसे जैविक करना चाहते हैं तो 7 से 8 दिन के अंतराल में आप गोबर की खाद,
1: अच्छा
0: कच्ची गोबर की खाद, यानी कि फ्रेश जो काउडंग है, उसकी स्लरी बना लें। उसे आप 5 केजी जो है वो 10 लीटर पानी में घोल बना लें और इसको सॉइल में अप्लाई कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: मिट्टी
1: जो
0: में
1: गाढ़ा घोल
0: गाढ़ा
1: बनता है।
0: घोल बना के इसको दे सकते हैं। ये
1: अच्छा
0: फ्रेश काउडंग स्लरी भी कर सकते हैं, या फिर आप 300 ग्राम यूरिया, 300 केजी यूरिया और 175 या 150 केजी, ये 1 हेक्टेयर के लिए है,
1: जी
0: सिंगल
1: हाँ
0: सुपर फॉस्फेट, और 150 केजी म्यूरेट ऑफ पोटैश आप MOP यूज़ कर सकते हैं। यूरिया का डोज जो है वो पहले 7 या 8 दिन के अंतराल में 150 कर ले, आधा कर ले, और उसके बाद आप 1-15 दिन के बाद में आप आधा उसका डोज दे सकते
1: दे
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: जी
1: चलिए, तो जैसे आपने कहा हमारे यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट भी आजकल किसान भाई
0: जी
1: करते हैं,
0: जी
1: तो इसका इस्तेमाल भी किया जा
0: हाँ,
1: सकता
0: इसका
1: है।
0: इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। और किसान भाई, रुपाई करने से पहले अगर मुर्गी का खाद जो मिलता है, जो 1 साल पुराना हो, मुर्गी के जो किसान भाइयों के पास बहुत
1: जी
0: सारे लोग
1: हाँ
0: आजकल पोल्ट्री भी रखते हैं, तो जो पोल्ट्री से निकाला हुआ जो खाद है उसे अगर 1 साल या 6 से 8 महीने अगर आप बाहर रखे हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 1 टन लगेगा 1 हेक्टेयर में, जबकि आपको गोबर के खाद के लिए 25 टन की ज़रूरत होती है। ये खाद इससे ज़्यादा आप कम इस्तेमाल करके ज़्यादा फायदा ले सकते हैं।
1: बिल्कुल। और जहाँ तक खरपतवार का सवाल है तो हमारे इन द्वीपों में ये समस्या तो बहुत ज़्यादा होती है।
0: ये समस्या मिर्च में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है। अगर किसान भाई शुरू दिन से ही अगर उसकी खरपतवार निकालना शुरू कर दें तो इसकी ज़्यादा मतलब नुकसानदायक नहीं होती है मिर्च के खेतों में।
1: अच्छा
0: और आप अगर आजकल तो काफ़ी वीडर, कोनो वीडर वगैरह भी उपलब्ध है, जिससे कि हम किसान भाइयों को इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं।
1: अच्छा अगर उसमें बीच में निराई गुड़ाई भी हो
0: निराई
1: जाएगी
0: गुड़ाई भी हो जाएगी,
1: एक
0: जो कि
1: साल
0: बहुत ज़रूरी है। 15 दिन में आपको मिट्टी
1: चढ़ानी चाहिए।
0: चढ़ाना ही ज़रूरी है उसमें मिर्च की।
1: अच्छा, और चूंकि जैसा बारिश तो यहाँ पर होती है, लेकिन अगर लंबी अवधि तक अगर बारिश ना हो
0: जी
1: तो सिंचाई भी ज़रूरी
0: हाँ,
1: होती है।
0: सिंचाई भी ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा आपको कि 7 से 8 दिन में आप सिंचाई ज़रूरी, इसकी सिंचाई ज़रूरी है। वैसे तो मिर्च के उसी मौसम में हम करते हैं जब हमारे यहाँ पे वर्षा अधिक
1: जी
0: मिलती है, क्योंकि जब वर्षा नहीं होती है तो किसान भाई मुख्यतः दलहन फसलों की ही यहाँ पर करते हैं। तो मिर्च के समय हमेशा ही ध्यान हमें ये देना है कि हम जल का निकास सही तरीके से करें। मिर्च के जब भी यहाँ पर किसान भाई खेती करते हैं तो वो ध्यान दें कि जल निकासी ज़रूरी है इसमें,
1: अच्छा
0: प्रॉपरली उसका ड्रेनेज जो बनाते हैं वो सही हो।
1: अच्छी बात है। और कीड़े और बीमारियों की समस्या हमारे इन द्वीपों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है,
0: जी,
1: मिर्च में भी ये समस्या
0: मिर्च
1: है।
0: में तो ये समस्या कुछ है, देखा गया है। जैसे कि मिर्च में जो कॉमन समस्या है, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एफिड्स, थ्रिप्स वगैरह जो छोटे छोटे काले काले होते हैं, कुछ उड़ने वाले पाए जाते हैं, तो ये सब इसके लिए अगर किसान भाई चाहे तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि जैविक तरीके से भी इसका, जिससे कि कम खर्च में वो लोग इसका अच्छे से रोकथाम कर सके, ऐसे में हम सलाह देते हैं कि ये एक जो टबैको होता है, यानी कि
1: तंबाकू जो होता
0: तंबाकू
1: है।
0: जो होता है, तंबाकू का एक डिकॉशन बना ले। ये डिकॉशन जो है बहुत आसान है बनाने के लिए। इसके साथ नीम का तेल, नीम तेल जो मिलता है हम जो गाय वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों का मिश्रण कर एक डिकॉशन बना सकते हैं, जो कि किसानों के लिए भी हानिकारक नहीं है और हमारे मतलब जो उसे मिर्च को जो खाएं उसके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
1: ये जो डिकॉक्शन की जो आपने बात कही, तो
0: जी
1: उसको किस तरह बनाएं किसान
0: जी
1: भाई?
0: बिल्कुल, इसके लिए डिकॉशन बनाने के लिए आपको 500 ग्राम जो तंबाकू
1: तंबाकू।
0: होता है, तंबाकू की पत्ती को आप क्रश कर ले, मतलब
1: अच्छा,
0: उसको
1: छोटा छोटा ये
0: छोटे
1: कर ले
0: छोटे
1: या मसल
0: पाउडर
1: ले?
0: कर ले या
1: पाउडर कर
0: मसल
1: ले।
0: ले, और इसको जो है 5 लीटर

0: पानी में, 500 ग्राम तंबाकू का जो मसला हुआ उसको 5 लीटर पानी में आप घोल मिला ले, मिलाकर 24 घंटे आप, यानी कि एक दिन पूरा आप उसको रख ले,
1: जी
0: उसके बाद उसको छान कर आप निकाल ले। और साथ ही साथ में आपको जस्ट जो बार सोप होता है लंबा वाला जो कपड़े धोने का व्हाइट कलर का है, उसका एक 100 ग्राम का एक टुकड़ा, छोटा सा
1: अच्छा
0: टुकड़ा ले ले, और उसको थोड़ा सा आधा 1 लीटर में पानी में अच्छे से घोल बना ले। और घोल बनाने के बाद ये जो तंबाकू का हमने घोल बनाया था उसको इसमें मिला ले,
1: जी
0: मिलाकर इसको 5 लीटर के पानी में फिर मिक्स कर ले,
1: अच्छा से मिला ले।
0: अच्छे
1: हाँ
0: से मिला ले तो ज़्यादा क्वांटिटी बन जाएगा और ये हम स्प्रे कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: ये 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी
1: और
0: होता है।
1: इसमें नीम ऑयल इसी में डालें या
0: हाँ,
1: इसको अलग
0: नीम
1: से?
0: ऑयल इसी में डालें, नीम
1: अच्छा
0: ऑयल इसी में डालें, क्योंकि वो सोप इसलिए यूज़ करते हैं कि वो नीम को और ऑयल को और इसको दोनों को अपना
1: रोक सके,
0: रोक
1: स्टिक कर सके।
0: स्टिक कर सके। जी
1: बिल्कुल सही,
0: बिल्कुल,
1: तो ये कारगर साबित होती है।
0: ये कारगर साबित होती है। और किसान भाई अगर चाहे तो दूसरी, जैसे लहसुन भी यूज़ करते हैं, कई किसान भाई हैं जो लहसुन की भी एक सोल्यूशन बना लेते हैं, नीम ऑयल के साथ लहसुन की सोल्यूशन बना लेते हैं, इसकी भी इस्तेमाल स्प्रे के रूप में किया जाता है।
1: अच्छा, तो ये
0: जी
1: तो जैसा आपने बताया फिड है, थ्रिप्स है, इस तरह के चूसने
0: जी
1: वाले जो कीड़े
0: जी
1: हैं
0: जी
1: इसकी
0: जी
1: समस्या है।
0: जी
1: इसके अलावा बीमारियों में भी कुछ
0: हाँ,
1: बीमारियां
0: बीमारियों
1: देखें?
0: में जैसे कि पाया जाता है डैम्पिंग ऑफ, यानी कि उसकी जो कॉलर होती है, उसकी जो जड़ के पास पास होती है, ये सड़ने लग जाती है,
1: अच्छा, नर्सरी में ये देखें?
0: नर्सरी में देखा जाता है। तो नर्सरी में ही अगर हम इसका रोकथाम कर ले तो कैप्टन जो दवा होती है, केमिकल मिलता है कैप्टन कहते हैं इसे, इसे इसका 2% यानी कि 2 ग्राम 1 लीटर पानी में
1: जी
0: आप घोल ले और इसका नर्सरी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन फील्ड में भी यही कैप्टन का ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसी डैम्पिंग ऑफ वगैरह के लिए।
1: जी
0: और लीफ कर्ल भी देखा गया, यानी कि पत्ती मोड़
1: मोड़
0: मोड़
1: देती है।
0: देती है। पत्ती मोड़ना तो ये एक एक्चुअली एक वायरस का ये होता है,
1: जी
0: बट इसको जो कैरी करता है वो व्हाइट फ्लाई है,
1: अच्छा,
0: तो
1: सफेद
0: हमें
1: मक्खी इसको
0: सफ़ेद
1: फैलाती
0: मक्खी
1: है।
0: इसको फैलाती है, तो हमें सबसे पहले उसकी रो लीफ कर्ल जो मुड़ना होता है इसकी रोकथाम के लिए सफ़ेद मक्खी को पहले
1: रोकना
0: अपने
1: होगा।
0: रोकना होगा। तो सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए हमारे कृषि विभाग के द्वारा जो दिया जाता है, जैसे डोलर है या एंडोसल्फोन है,
1: जी
0: इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और ये जो एक मुरझान की बीमारी भी देखी जाती है अक्सर मिर्च में, बैंगन वगैरह में,
0: जी
1: सबको वो
0: जी
1: भी?
0: वो भी आप इसी कैप्टन से ही कर सकते हैं या डॉलर का भी इस्तेमाल अब
1: किया जा
0: किया जा
1: सकता है।
0: सकता है।
1: तो मैडम, इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर किसान भाई मिर्च की खेती करेंगे,
0: जी
1: तो आजकल बाजार में मिर्च के भाव तो हमेशा ही
0: हमेशा
1: बहुत अच्छा रहता
0: जी,
1: है, तो काफ़ी
0: क्योंकि
1: लाभान्वित हो
0: किसान
1: सकते
0: भाई जो है
1: हैं।
0: यहाँ पर हम मिर्च की जो करते हैं वो सिर्फ सब्जियों के लिए ही इस्तेमाल अब तक तो किया जाता है। अगर इसे सुखाया जाए, इसका पाउडर किया जाए, और सुखाना भी इतना बहुत बड़ा एक काम नहीं है, क्योंकि इसे धूप में ही सुखाना है,
1: जी
0: और इसे सुखाकर और दूसरी वैरायटीज़ का भी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अचार वगैरह बनाने के लिए,
1: जी
0: सॉस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान इसे भी यहाँ की जलवायु और मिट्टी के लिए तो
1: उपयुक्त है।
0: किसान ले सकते हैं।
1: चलिए,
0: जी
1: तो मैडम आज आप कार्यक्रम में आए और इतनी सारी बातें आपने किसानों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हरी मिर्च की खेती पर श्रीमती रेखा मनोज से की गई बातचीत।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चलिए, खेती किसानी की बातों के बाद अब थोड़ा सा मन को बहलाया जाए और कानों में रस घोला जाए तो अपनी थकान को दूर करने के लिए आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
4: सीखो तो सिखाए तुम्हें प्यार का सबक, सपने

अभी आपने एक बेहद प्यारा सा गीत सुना। उम्मीद है इस सुरीली धुन ने आपके दिल को छू लिया होगा और आपके दिन भर की थकान को दूर कर दिया होगा। तो किसान साथियों, अब वक्त हो चला है आज के प्रश्न का जवाब जानने का, जो हमने कार्यक्रम की बिल्कुल शुरुआत में आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, यूरिया में लगभग कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? मुझे पता है कि आप में से बहुत से किसान साथियों ने इसका सही अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हाँ, सही उत्तर है 45 से 46%। जी हाँ किसान भाइयों, यूरिया में लगभग 45 से 46% नाइट्रोजन होता है। तो किसान साथियों, आज के कृषि जगत कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज दी गई यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। किसान साथियों, अभी आपने एक बेहद प्यारा सा गीत सुना। उम्मीद है इस सुरीली धुन ने आपके दिल को छू लिया होगा और आपके दिन भर की थकान को दूर कर दिया होगा। तो किसान साथियों, अब वक्त हो चला है आज के प्रश्न का जवाब जानने का, जो हमने कार्यक्रम की बिल्कुल शुरुआत में आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, यूरिया में लगभग कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? मुझे पता है कि आप में से बहुत से किसान साथियों ने इसका सही अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हाँ, सही उत्तर है 45 से 46%। जी हाँ किसान भाइयों, यूरिया में लगभग 45 से 46% नाइट्रोजन होता है। तो किसान साथियों, आज के कृषि जगत कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज दी गई यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी और आपकी खेती को और भी मुनाफेदार बनाएगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगनी। इस अंक में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, मन की बात, विश्व साइकिल दिवस, आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया और विश्व पर्यावरण दिवस।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए। जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ तले इलाकों में होती हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलअर्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली है।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक

0: महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने हाल ही में चोल कालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
0: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइन जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूँगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई है। इस श्रेणी में वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल है। जिन बच्चों की आयु 31 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष से कम है और जिन्होंने इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा असाधारण योगदान दिया है, वे नामांकन के पात्र हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से 31 जुलाई तक ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस से एक सप्ताह पहले राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में प्रदान किया जाता है। बाल शक्ति पुरस्कार के विजेता 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेती हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सभी लाभार्थियों से अपनी वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए कृषि विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बायोमेट्रिक EKYC पूरा करने का आग्रह किया है। भारत सरकार ने वार्षिक EKYC पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। जिन लाभार्थियों ने पहले EKYC पूरा कर लिया था, उन्हें भी वर्ष 2026-27 के लिए इस वार्षिक EKYC प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। EKYC प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 30 जून है। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो हर 4 महीने में 2000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। भारत सरकार अब तक देश भर के किसानों को सफलतापूर्वक 22 किश्तें जारी कर चुकी है। किसान सम्मान सेवा केंद्र और अपने क्षेत्रीय कृषि कार्यालय में EKYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित कृषि कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि PM स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में

कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है।

गारंटी के तीन चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। माई भारत श्री विजयपुरम ने ग्राम पंचायत कन्यापुरम के सहयोग से विम्बल्लीगंज के मिनी स्टेडियम में विश्व साइकिल दिवस मनाया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत कन्यापुरम के प्रधान पी अब्दुल बशीर ने मुख्य अतिथि के रूप में साइकिल चलाने को एक किफायती, पर्यावरण के अनुकूल और स्वास्थ्य वर्धक परिवहन साधन के रूप में रेखांकित किया। विशिष्ट अतिथि संयुक्त निदेशक माई भारत ने फिटनेस, स्थायी गतिशीलता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने में विश्व साइकिल दिवस के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्वस्थ्य, अनुशासित और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवन शैली के माध्यम से विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में युवाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। जिला युवा अधिकारी दीपक कुमार ने विश्व साइकिल दिवस के उद्देश्यों और माई भारत की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र और विजेताओं को पदक देकर सम्मानित किया गया। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरा होने के देशव्यापी उत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने 2 जून को अपनी 63वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्राचार्य रीता बनर्जी मुख्य अतिथि, वरिष्ठ कलाकार गीतांजलि आचार्य विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कर्मचारी, आकाशवाणी और दूरदर्शन के वर्तमान कर्मचारी, कैजुअल असाइन, आमंत्रित अतिथि और कलाकार भी मौजूद थे। सहायक निदेशक कार्यक्रम मीना प्रकाश ने उपस्थिति का स्वागत किया। उप महानिदेशक अभियांत्रिकी सी सुब्बा राव ने अपने संबोधन में रेडियो के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि ने आकाशवाणी से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को साझा किया। यह उत्सव सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से लोगों की सेवा करने में आकाशवाणी की समृद्ध विरासत और स्थायी यात्रा को दर्शाता है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विशेष कार्यक्रमों ने इस आयोजन में जीवंतता और रंग दिए, जिससे यह अवसर सभी उपस्थित लोगों के लिए यादगार बन गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र तथा द्वीपीय जैव विविधता EIACP केंद्र द्वारा पर्यावरण जागरूकता रैली और समुद्र तट सफाई अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हाल ही में पर्यावरण जागरूकता रैली सेल्यूलर जेल से शुरू होकर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कार्यालय तक पहुंची। रैली का शुभारंभ पर्यावरण एवं वन विभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य वन संरक्षक वन जीव डॉक्टर एस दिनेश कन्नन ने किया। रैली में वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, JNRM के विद्यार्थियों, वन अधिकारियों तथा ऑटो के सदस्यों सहित कुल 62 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने सतत जीवन शैली, जैव विविधता संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर संदेश प्रदर्शित किए। कार्यक्रम में केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सी शिव पेरुमन ने जैव विविधता संरक्षण, अनुसंधान एवं प्रलेखन में संस्थान की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा द्वीप पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से पर्यटन, सांस्कृतिक गतिविधियों, मनोरंजन, खेल और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वीपों में लाइव कार्यक्रमों के जरिए लाइसेंस और अनुमति के लिए कार्यकारी आदेश 2026 जारी किया गया है। इसका उद्देश्य द्वीपों में संगीत समारोह, उत्सवों, प्रदर्शनियों, खेल आयोजनों, सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य लाइव कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुकूल ढांचा तैयार करना है, जिसके माध्यम से आयोजक पुलिस, यातायात, अग्निसुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, नगरपालिका और आबकारी संबंधी सभी आवश्यक अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिस पर 10 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी, जबकि तत्काल श्रेणी के तहत आने वाले अत्यावश्यक आवेदनों पर 2 दिनों का समय लगेगा। यह आदेश आवेदनों की वास्तविक समय में ट्रैकिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सूचना और अनुमोदनों की पारदर्शी निगरानी की सुविधा भी प्रदान करेगा। यह सुव्यवस्थित प्रणाली स्थानीय कलाकारों, उद्यमियों, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों, आतिथ्य क्षेत्र और संबद्ध सेवा प्रदाताओं के लिए भी अवसर प्रदान करेगा, जिससे द्वीपों में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। दक्षिण अंडमान जिला कार्यालय में हाल ही में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य कार्यों में

हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा कर्मचारियों को नवीन तकनीकी साधनों के माध्यम से हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका कुमारी ने उपस्थित कर्मचारियों से सरकारी कार्यों में हिंदी का अधिकतम उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अनेक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और डिजिटल उपकरण उपलब्ध है जिनकी सहायता से हिंदी में कार्य करना पहले की अपेक्षा अधिक सरल और सुविधाजनक हो गया है। उन्होंने कर्मचारियों को राजभाषा नीति के अनुरूप हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में राजभाषा विभाग के कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी श्री अजय सिंह ने कर्मचारियों को कंप्यूटर में यूनिकोड सक्रिय करने की प्रक्रिया, भाषणी एवं भारतीय सॉफ्टवेयर के उपयोग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से हिंदी में कार्य करने के विभिन्न तरीकों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से हिंदी में कार्य की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार किया जा सकता है। कार्यक्रम का संचालन कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी चैरिटी कैल्विन ने किया। कार्यशाला में उपस्थित कर्मचारियों ने विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे और हिंदी में कार्य करने हेतु उपलब्ध तकनीकी संसाधनों की उपयोगी जानकारी प्राप्त की। समाज कल्याण विभाग द्वीप समूह के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए एडिप और आरवीआई योजना के अंतर्गत सहायक उपकरणों के वितरण हेतु दिव्यांगता मूल्यांकन शिविरों का आयोजन करेगा। समग्र क्षेत्रीय केंद्र पीएमडीके आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के समन्वय से आयोजित इन शिविरों का आयोजन पात्र लाभार्थियों को सहायक उपकरण और संबंधित सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए उनके मूल्यांकन और पहचान की सुविधा हेतु किया जा रहा है। शिविर 22 जून से सुबह 9 बजे से द्वीपों के विभिन्न चिकित्सा केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे।

इसके साथ ही समाचार तरंगणी का ये अंक समाप्त हुआ। समाचार तरंगणी आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से तैयार की जाती है। वाचिका अनीता क्रिकेटा, संपादक और प्रस्तुतकर्ता अंकित कुलश्रेष्ठ।

हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की तीसरी कड़ी।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और आरजे चेतन। और आज हम एक ऐसे विषय की खोज कर रहे हैं जो हमारे सामाजिक जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है, मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव। तो अपना पसंदीदा चाय का कप ले, एक आरामदायक जगह ढूंढे और आइए साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण बातचीत को जारी रखें। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया ने खुद को हमारे रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में बुना है, हमें उन तरीकों से जोड़ा है जिनके बारे में हम कुछ समय पहले सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन आइए वास्तविक बने, विस्तार से जानते हैं कि सोशल मीडिया हमें कैसे प्रभावित करता है। हमारे द्वारा की जाने वाली निरंतर तुलनाओं से लेकर सत्यपान प्राप्त करने में इसकी भूमिका तक, तो इस डिजिटल क्षेत्र और हमारे दिल और दिमाग पर इसके प्रभाव की गहरी जानकारी के लिए तैयार हो जाइए। सोशल मीडिया में वह चीज है जहां लोग अपने जीवन की सर्वोत्तम हिस्सा है, जीत, ऊंचाइयां, चमकदार क्षण प्रदर्शित करता है। और क्या, ये एक हाईलाइट रील में एक झलक देखने जैसा है। समस्या यह है कि हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता की तुलना इन चित्र परिपूर्ण स्निपेट से करना आसान नहीं है। इससे पहले कि हम यह जाने, हम खुद को अच्छा न मानने और खुद पर संदेह करने के चक्र में फंस गए हैं। इस तुलना खेल को सुलझाए और देखें कि हमारे दिमाग के साथ कैसे खिलवाड़ करता है। अब दोस्तों, ये एक बहुत ही सामान्य बात है, हम हमेशा सोशल मीडिया पर दूसरों के मुकाबले अपने जीवन को आकार दे रहे हैं। और ईमानदारी से कहें तो ये हमारे दिमाग

आपके साथ खिलवाड़ है, लेकिन ये कोई चिंता नहीं है। हम यह केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं है, हम कुछ समाधान भी खोज रहे हैं। दोस्तों, हम निश्चित रूप से इस कंपैरिजन गेम में फंसे हुए हैं। इस गेम से हमें बाहर निकलना है। अब आपके चमकने का समय आ गया है, टाइम टू राइज एंड शाइन। हम यह जानने के लिए उत्सुक है कि इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया रोलर स्केटर ने आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित किया है? अपने विचार और अनुभव हमें कॉल या हमें एक ईमेल भेजें। आपके शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं जो ऐसे ही महसूस कर रहा है, तो आइए मिलकर इस डिजिटल भूल भुलैये से पार पाए। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। अब माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा गियर बदलते हुए आइए वास्तव में सोशल मीडिया पर संपूर्ण सत्यापन दृश्य को समझें। क्या आप जानते हैं, लाइक, कमेंट और शेयर की लगातार तलाश यह पीठ पर बाहरी थपथपाहट जैसे है, जैसे हम सभी चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ वास्तव में कठिन क्षण है। क्या होता है जब उन पसंदों की आपूर्ति कम हो जाती है या जब बहुत ही अच्छी नई टिप्पणियां सकारात्मक टिप्पणियों से अधिक होने लगती है? खैर, सावधान रहे, क्योंकि हमारे आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति पर इसका असर काफी गहरा हो सकता है। आइए इस सत्यापन पहेली को खोले और देखें कि ये हमारे मानसिक कल्याण की बड़ी तस्वीर में कैसी भूमिका निभाती है। दोस्तों, ये स्वाभाविक है, मान्यता की चाहत पूरी तरह से मानवीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यहाँ एक बात है, उस गर्म धुंधले एहसास के लिए केवल बाहरी श्रोताओं पर निर्भर न रहना अति महत्वपूर्ण है। हम सोशल मीडिया के साथ एक स्वस्थ माहौल बनाने के तरीकों की खोज कर रहे हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भीतर से उस मान्यता को कैसे प्राप्त करें। ये एक मजबूती नींव तैयार करने जैसे है। दोस्तों, यहाँ सोचने के लिए पहेली का एक और टुकड़ा है। सोशल मीडिया सामग्री की सावधानी पूर्वक बनाई गई दुनिया, वहाँ बहुत से लोग डिजिटल कलाकारों की तरह हैं, जो अपने जीवन के लगभग पूर्ण संस्करण को प्रस्तुत करने के लिए अपने पोस्ट को सावधानी पूर्वक चुनते हैं और फिल्टर करते हैं। ऐसे लगता है मानो वो इस आदर्श चित्र को चित्रित कर रहे हैं। शिकार, ये पॉलिश की गई वास्तविकता हमारे दिमाग में गड़बड़ कर सकती है। जो सामान्य या प्राप्त करने योग्य मानी जाती है, उसके बारे में एक प्रकार की विकृत दृष्टिकोण बन सकती है। ये एक डोमिनोस इफेक्ट की तरह है। ये अवास्तविक उम्मीद सेटिंग गेम वास्तव में हमारे मानसिक कल्याण में बाउंसर फेंक सकता है। आइए इस निर्मित वास्तविकता को उजागर करें और देखें कि ये दुनिया के बारे में हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करती है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। फ्रेंड्स, आइए गियर चेंज करें और गेम चेंजिंग रणनीतियों पर जूम करें। हम यह बताने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया के साथ अपने रिश्ते में चीजों को कैसे सकारात्मक और संतुलित रखा जा सकता है। तो यह कुछ व्यावहारिक सुझाव आपके लिए आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए एक महत्वपूर्ण कदम से शुरुआत करें, सीमाएं निर्धारित करना। ये डिजिटल रेत में एक रेखा खींचने जैसा है। अपने सोशल मीडिया रोमांच के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें और अपने घर के कुछ तकनीकी मुक्त क्षेत्र घोषित करके एक गेम प्लान बनाएं। जब आप जानबूझकर यह स्थान और समय बनाते हैं तो यह आपके सोशल मीडिया के उपयोग पर लगभग वापस लाने जैसा है। इस तरह आप 24/7 इसकी दया पर निर्भर नहीं है और यह मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को नियंत्रण में रखने के लिए चमत्कार कर सकता है। आइए अपने डिजिटल जीवन को संतुलित करने की कला में महारत हासिल करें। तो दोस्तों, यहाँ एक विचार है, क्या आपने कभी अपनी सोशल मीडिया की आदत को थोड़ी राहत देना, विराम देने पर विचार

किया, इसके बारे में सोचा। एक साप्ताहिक सोशल मीडिया डिटॉक्स दिवस और एक क्षण के लिए अंतहीन स्क्रॉल पर विराम जैसे, जो आपको यहाँ और अभी में पूरी तरह से उपस्थित होने की अनुमति देता है। दैट मीन्स यू विल बी हियर एंड नाउ इन द मोमेंट। ये रणनीति अद्भुत काम करती है। डिजिटल चर्चा से अलग होने के लिए एक दिन समर्पित करना एक मानसिक रीसेट बटन की तरह हो सकता है। ये आपके लिए मानसिक ताजगी का टिकट है और स्क्रीन से परे की दुनिया का आनंद लेने का मौका है। तो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए डिजिटल डिटॉक्स के अपने स्वयं के दिन को निर्धारित करने के बारे में क्या ख्याल है? चीजों को संतुलित रखने की ये एक शानदार रणनीति है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ध्यान में रखें, सोशल मीडिया एक उपकरण है और किसी भी उपकरण की तरह इसका प्रभाव भी हमारे हाथों में है। चाहे वो उन महत्वपूर्ण सीमाओं को निर्धारित करना हो, एक सकारात्मक ऑनलाइन आश्रय बनना हो, या उन वास्तविक दुनिया कनेक्शन का निर्माण करना हो, हमारे पास लचीलेपन और भलाई के साथ इस डिजिटल जंगल को नेविगेट करने के लिए उपकरण है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की तीसरी कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:55 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जनसूचना से आपको अवगत करवाएंगे। दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे संध्या 7:20 पर। संध्या 7:30 पर सुनिए युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत फोन इन प्रोग्राम हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात्रि 8:00। रात्रि 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे गौरव गान कार्यक्रम और रात्रि 10:00 संदेशे आते हैं कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये तो थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, हमारी पहली सभा आरंभ होगी सवेरे 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर सुनिए एग्री टिप्स, विषय रहेगा केले में पोषक तत्वों का महत्व। जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:10 पर। सवेरे 6:15 पर सुनिए इंद्रधनुष कार्यक्रम, विषय रहेगा रेखा। रामचरित मानस गान का समय रहेगा सवेरे 6:30। सवेरे 6:40 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम वतन के गीत। मौसम की जानकारी कार्यक्रमों का विवरण से आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:50 पर। सवेरे 7:15 पर होगा कार्यक्रम देश रागनी। लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का समय रहेगा सवेरे 7:30। विषय रहेगा योग के माध्यम जीवन शैली संबंधी रोगों का प्रबंधन, विशेषज्ञ

क्या होंगी डॉक्टर नंदिनी। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 8:30। कलाकार होंगे विशाल गोस्वामी। सवेरे 9 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर आप सुधा रघुनाथन का कर्नाटक शैली में गायन सुन पाएंगे। सवेरे 10 बजे सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश। गीत गुंजन कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे दिन के 11 बजे। ग्यारह बजकर 30 मिनट पर सुनिए कार्यक्रम गीत अतीत। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12 बजे, जिसमें श्रोता फिल्मी गीत सुन पाएंगे। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। कलाकार होंगे जसवंत सिंह, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम। दोपहर 1:30 पर व्हाट्सएप आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ श्रोताओं हमारी पहली सभा समाप्त होगी, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर सुनिए नॉन स्टॉप म्यूजिक और दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। श्रोताओं हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। शाम 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। कार्यक्रमों के विवरण से आपको अवगत करवाएंगे शाम 4:40 पर। 4:45 पर आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम बहारों की शाम का। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5 बजे। शाम 5:30 पर सुनिए बांग्ला कार्यक्रम। किसानवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6 बजे, जिसमें आप कृषि कार्यों से जुड़ी महिला श्रीमती सरिता से की गई बातचीत सुन पाएंगे। संध्या 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम आमने सामने। संध्या 6:45 पर सुनिए लेखक श्री रमेश मुगड़ा की लिखी झलकी 20वीं सदी का बच्चा। मौसम की जानकारी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से आपको अवगत करवाएंगे संध्या 7:15 पर। दिल ने फिर याद किया श्रोताओं फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए संध्या 7:20 पर। संध्या 7:30 पर सुनिए युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम ऐसा भी होता है। दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुने पाएंगे रात्रि 8 बजे। रोजगार समाचार का समय रहेगा रात्रि 8:30। तत्पश्चात आप सुनेंगे गौरव गान कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये तो थे हमारे आज व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं।

0: हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:05 होने को है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पुलिस?
5: मिस सीमा
4: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1 लाख दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
6: हेलो मम्मा।
7: आरबीआई कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार ने खुला समुद्री पिंजरा मत्स्य पालन एवं 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ परियोजना का शुभारंभ किया। पिनाकीनगर और कमलापुर गांव में किसानों को खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत संतुलित उर्वरक उपयोग और जैविक खेती के प्रति जागरूक किया गया। ग्यारहचरमा फीडर में मरम्मत कार्य के चलते कल विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी और MV स्वराज द्वीप जहाज की टिकट कल सुबह 9 बजे से मिलेंगी।

सांध समाचारों के साथ मैं अनामिका सेन गुप्ता। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और मत्स्य विभाग द्वारा खुला समुद्री पिंजरा मत्स्य पालन एवं 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ परियोजना का मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि यह परियोजना द्वीप समूह के लिए वरदान सिद्ध होगी। उन्होंने लोगों को मछली बीज भी वितरित किए। इस अवसर पर खुले समुद्र में पिंजरा मत्स्य पालन एवं 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ परियोजना से संबंधित कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया। यह पहल ब्लू इकोनॉमी को सशक्त बनाने तथा द्वीप समूह में सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

0: इसी अवसर पर आईआईटी गुवाहाटी एवं एनआईओटी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ संरचनाओं का क्षेत्रीय परीक्षण एवं स्थापना की गई। इन संरचनाओं का उद्देश्य समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देना, मछलियों के प्राकृतिक आवास को पुनर्स्थापित करना तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं हितधारकों ने भाग लिया। सभी ने इस पहल को द्वीप क्षेत्र के सतत विकास और समुद्री संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस अवसर पर राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रभारी डॉ. दिलीप कुमार झा ने कहा,
1: आज पर्यावरण दिवस के मौके पर एनआईओटी के प्रांगण में आर्टिफिशियल रीफ और फिश का सीड को स्टॉकिंग का एक कार्यक्रम किया गया, जो कि हमारे द्वीप के मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण सर आए थे और उनके उपस्थिति में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ये बताया गया कि अगर इस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं, जैसे सीड स्टॉक करते हैं या आर्टिफिशियल रीफ करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो पर्यावरण है उसको और वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने में बहुत ही मदद मिलेगा, कि लोगों के लिए उनका जो जीवन है, जीवन के स्तर को बेहतर बना सकते हैं।
0: केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चल रहे खेत बचाओ अभियान 2026 के तहत किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ICAR कृषि विज्ञान केंद्र निम्बुडेरा द्वारा केंद्र शासित प्रदेश कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी तथा कृषि विभाग प्रशासन के सहयोग से उत्तर एवं मध्य अंडमान जिले के पिनाकी नगर और कमलापुर गांव में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक एवं प्राकृतिक खेती की विधियों तथा कृषि से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम में कुल 20 किसानों ने भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है बिजली और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। ग्यारहचरमा फीडर में क्षतिग्रस्त RCCHT पोल के प्रतिस्थापन तथा नए ट्रांसफार्मर की स्थापना के लिए HTLT लाइन शिफ्टिंग कार्य किए जाने के चलते कल 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान लक्ष्मी मोटर, शिवाजी कॉलोनी, TR हाउसिंग, MR हाउसिंग, ग्यारहचरमा बस्ती, सुजन रोज, ग्यारहचरमा मेडिकल, काली मंदी, TTI रोड, पंप हाउस, मुर्दा खाड़ी, IMFC तथा ग्यारहचरमा फीडर के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। यह कार्य मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, जलवायु कार्यवाही विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का वैश्विक उत्सव मनाया गया। इसके अलावा लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय क्षेत्र स्टेशन, निकोबार, मध्यतर अंडमान और दक्षिण अंडमान जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम खेत बचाओ अभियान के उद्देश्य के अनुरूप था, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर AC वर्षनेय ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन से लड़ने और पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक रणनीतियों के रूप में वृक्षारोपण और जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर बल दिया। वृक्षारोपण अभियान में नींबू और अन्य वृक्ष प्रजातियों के कुल 50 पौधे लगाए गए। इस वृक्षारोपण अभियान में संस्थान के सभी संभाग प्रमुखों, वैज्ञानिकों, प्रशासनिक अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों और 120 किसानों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दक्षिण अंडमान में व्यापक स्तर पर

0: वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह आयोजन आज कन्यापुरम जेएनआरएम परिसर तथा चिन्मय मिशन परिसर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता और हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन माई भारत श्री विजयपुरम द्वारा बिम्बलीगंज की एक निजी संस्था के सहयोग से कन्यापुरम में किया गया। कार्यक्रम में युवा स्वयंसेवकों, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणों, विद्यार्थियों, वन विभाग के अधिकारियों तथा नागरिक समाज के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर सहायक वन संरक्षक शरद कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 1000 देशी एवं पर्यावरण हितैषी पौधे लगाए गए। इसी क्रम में जैनारम परिसर और चिन्मय मिशन परिसर में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर का केंद्र संदेश रहा, हमारी पृथ्वी, हमारा भविष्य, हमारी जिम्मेदारी। एमवी स्वराजदीप जहाज के 7 जून को चेन्नई के लिए निर्धारित प्रस्थान के लिए आरक्षित कोटे के अप्रयुक्त टिकटों को कल सुबह 9 बजे से आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यात्री डीएसएस के ई टिकट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्स टिकटिंग काउंटर से भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ई टिकटिंग पोर्टल से जुड़ा एक क्यूआर कोड भी उपलब्ध कराया गया है। अंडमान निकोबार प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए द्वीप समूह के छात्रों के लिए कलिकट महाविद्यालय में संबद्ध कला एवं विज्ञान महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षित सीटों के संबंध में सूचना जारी की है। विश्वविद्यालय द्वारा द्वीप समूह के मूल निवासियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक एक सीट आरक्षित रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज तथा सीएपी पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी श्री विजयपुरम स्थित सचिवालय के विकास अनुभाग 4 में 16 जून तक जमा करना होगा। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में सत्र 2026-27 में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार प्रवेश के लिए कॉलेज एडमिशन अंडमान निकोबार .gov.in पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल 20 जून तक खुला रहेगा। पात्रता मानदंडों के संबंध में विवरणिका और अन्य जानकारी भी CCAP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार ने खुला समुद्री पिंजरा मत्स्य पालन एवं 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ परियोजना का शुभारंभ किया। पिनाकीनगर और कमलापुर गांव में किसानों को खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत संतुलित उर्वरक उपयोग और जैविक खेती के प्रति जागरूक किया गया। ग्यारहचरमा फीडर में मरम्मत कार्य के चलते कल विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी और एमवी स्वराजदीप जहाज की टिकट कल सुबह 9 बजे से मिलेंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
2: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
1: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
3: टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी, कार्यक्रमों का विवरण और जन सूचना। पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। समुद्र काफी अशांत रहेगा। ऐसी स्थिति में मछुआरों को 8 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी सेंटिनल शनिवार 6 तारीख को संध्या 6:30 पर मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी अगले दिन रविवार 7 तारीख को दोपहर 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु जलयान रविवार 7 तारीख को लिटिल अंडमान की यात्रा पर सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी उसी रोज रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट सोमवार 8 तारीख को सवेरे 7 बजे लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी मंगलवार 9 तारीख को दोपहर 12 बजे कार निकोबार से छूटकर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे कल शनिवार 6 तारीख को सवेरे 6 बजे लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानीजंगा कल शनिवार 6 तारीख को सवेरे 6:15 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी कल शनिवार 6 तारीख को सवेरे 6:15 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय कल शनिवार 6 तारीख को सवेरे 7 बजे लॉन्ग आइलैंड कदमतल्ला स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान अगले दिन 7 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए लौटेगा। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ। जन सूचनाएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता समाज सेवा पर्यावरण खेल कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। जन सूचनाएं समाप्त हुए। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं शादी नंबर फिल्म से अभिजीत अनुराधा श्रीराम की आवाजों में। शबीर अहमद का लिखा यह गीत है और धुन तैयार की है संजीव ने।

टैक्सी नंबर 9211। श्रोताओं, सुने इस फिल्म का ये गीत देव कोहली के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है विशाल शेखर ने, आवाज़ है शेखर की।

इसी के साथ श्रोताओं, दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। या हरी भरी धरती, या नीला आसमान, नदियाँ, झरने और पक्षियों की तान, प्रकृति का है ये आंचल सबसे महान, पर्यावरण ही तो है इस जीवन की जान। दोस्तों, आज 5 जून है और प्रत्येक वर्ष आज के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। आज यह दिन विश्व भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के महत्व को समझाना और प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। इसमें वायु, जल, भूमि, वन, पशु पक्षी तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर करता है। यदि पर्यावरण स्वच्छ और संतुलित रहेगा तो जीवन भी स्वस्थ और सुखमय रहेगा। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण जंगलों का क्षेत्र घट रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। इन समस्याओं का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और समस्त जीव जंतु

0: पर भी पड़ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस दिन कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लोग पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेते हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, जल और बिजली की बचत करनी चाहिए और कचरे का उचित प्रबंधन करना चाहिए। हमें सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करना चाहिए और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए। हमारी छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर हम पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक विशेष दिन नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण करता है। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ पृथ्वी दे सकेंगे। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए और पृथ्वी को हरा भरा एवं स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, आज शुक्रवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आकाशवाणी ने भारत की आज़ादी से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक की हर धड़कन को रिकॉर्ड किया है। इसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से हुआ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी का यह ध्येय वाक्य इसकी आत्मा है। देश के सुदूर गांवों से लेकर बर्फीली चोटियों तक, जहां इंटरनेट और टीवी नहीं पहुंच पाता, वहां आज भी रेडियो की गूंज पहुंचती है। दोस्तों, आकाशवाणी की आवाज सिर्फ तरंगे नहीं बल्कि भारत की साझा विरासत की गूंज है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो फ्रेंड।
1: हेलो,
0: नमस्कार। आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: दीदी, मैं केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, बेरसिया जिला।
0: बताइए केसरी सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया दीदी, और आप कैसे हो?
0: जी, हम सब भी बिल्कुल ही ठीक है। तो आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज की शाम दीदी यादगार मूवी से सुनवा दीजिएगा।
0: जी,
1: इस पथ पे चला उस पथ पे मुझे यहाँ चल तो बिछाने दे।
0: बहुत ही प्यारा गीत है। तो आकाशवाणी का आपके जीवन में क्या महत्व है? आप आकाशवाणी से किस प्रकार जुड़े हुए हैं?
1: अभी तो दीदी हम न्यूज वन AIR ऐप की मदद से आपके कार्यक्रम को सुनते हैं और बहुत दिनों से सुनते हैं थे। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, से मनोरंजन के साथ साथ हमको एनर्जी भी मिलती है। काम भी करते रहते हैं और कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं।
0: जी जी।
1: और ज्ञानवर्धक चीजें भी सुनने को मिलती हैं जिससे अपना नॉलेज बढ़ता है।
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आकाशवाणी से हमें बहुत सीख मिलती है और हमारे दिल को जो सुकून आकाशवाणी देता है वह और कहीं नहीं। तो हमें आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। चलिए हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं
1: ग्राम
0: आप?
1: हीरा जी, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: नमस्कार भगवान सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, बढ़िया हैं। आप तो बढ़िया हैं दीदी।
0: जी, हम सब भी बिल्कुल ही ठीक है, और हमें खुशी हुई आपने हमें कॉल किया। तो बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम है राजा बाबू, और गाने के बोले याद सताए दिल ना लगे दिलवर।
0: जी, बहुत ही प्यारा गीत है। तो आकाशवाणी का आपके जीवन में क्या महत्व है? आप आकाशवाणी से किस प्रकार जुड़े हुए हैं?
1: दीदी हम तो आकाशवाणी को बचपन से ही सुनते आ रहे हैं,
0: जी
1: और आकाशवाणी से बहुत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते हैं, और सेहत के लिए डॉक्टर वाले कार्यक्रम आते हैं, किसानों के लिए आते हैं, तो दीदी हम तो सुनते रहते हैं, कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: जी हमें खुशी हुई, और ऐसे ही आगे भी आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए। जी, तो बताइए आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो दीदी अभी गर्मी पड़ रही है हमारे इधर, थोड़ी बहुत हल्की सी बूंदाबांदी कल सुबह हुई थी दीदी,
0: जी
1: थोड़ा
0: जी
1: सा टेम्परेचर गिर गया है 2-3 डिग्री, बाकी गर्मी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है दीदी।
0: जी अच्छी बात है, अभी मॉनसून आने वाली है, आपको गर्मी से राहत मिल जाएगी।
1: जी जी जी जी
0: जी, तो हमें खुशी हुई आपने हमें कॉल किया, हमें आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। चलिए हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फ्रेंड।
1: हेलो फ्रेंड, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: नमस्ते राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, और इस समय हम मौसम का आनंद भी ले रहे हैं।
0: तो इस सुहाने से
1: जी
0: मौसम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है नुका अंदाज
0: जी
1: और गाने के बोल है मौसम आशिकाना है।
0: जी बहुत ही खूबसूरत गीत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण में आप क्या योगदान देते हैं?
1: जी, बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। क्या कहता हूँ कि पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए तो सबसे पहले तो ये है कि हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए, और अगर आप
0: जी
1: पेड़ लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, और प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो है ये भी पर्यावरण का नुकसान करता है, इसलिए हमें प्रदूषण नहीं करना चाहिए। और पानी हमें खूब बचाना चाहिए, और पानी को जो है संरक्षित करना चाहिए, और अधिक अधिक जो है हमें

0: हरा भरा पर्यावरण को बचाना है, पेड़ लगाना है और प्लास्टिक जो है वो उसको हमें क्या बोलते
1: कम योग। जी जी
0: चाहिए।
1: आप बिल्कुल का सही कहा, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, पेड़ों की कटाई में हमें थोड़ी रोक लगानी चाहिए और हम जितना हो सके पानी की बचत करें, बिजली की बचत करें। ये सारे छोटे छोटे कदम जब हम उठाएंगे तो हमारे पर्यावरण संरक्षण में हमारा बहुत योगदान होगा। तो हमें आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। चलिए राकेश, हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड।
1: हेलो।
0: हेलो, नमस्कार। आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: तो चलिए, गुमास्ता नगर स्कूल नंबर 71 इंदौर से। तो
0: जी अनिल जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बैंक में है, वहीं से आपसे बात कर रहे हैं।
0: तो बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है बॉबी, गायक कला लता मंगेशकर, कैलेंद्र सिंह, और गीत है हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए।
0: जी, बहुत ही प्यारा गीत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण में आप क्या योगदान देते हैं?
1: हमने हमें घर के आसपास काफी सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। दूसरों को भी ये कर रहे हैं कि कम से कम नीम और तुलसी का पौधा जरूर जरूर लगाए, और साल भर उनकी देखभाल करें। तो पेड़ों की जो हम देखभाल करते तो ऐसा लगता है कि हम हमारे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे छायादार वृक्ष भी बन जाते हैं और एक अच्छी हवा, सुकून भरी हवा देते हैं हमको,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल।
1: इससे पर्यावरण में भी सुधार होता है और हमें जीवन रक्षक एक मतलब प्रणाली की तरह काम करते हैं वो।
0: जी जी बिल्कुल भी। तो चलिए अनिल जी, हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।
2: बाहर से

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानू को इजाजत, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विगामी द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, नाउ वी ब्रिंग यू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद भरत खेड़ा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऑन मेजर रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर द ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट ऑफ एमएसएमईज। इंटरव्यूअर इज अर्जुन जे चौधरी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख नीतिगत सुधारों और पहलों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं अर्जुन जी चौधरी।
3: A warm welcome to our listeners on Akashvani, and today we're joined by Shri Bharat Kheda, who is the secretary at the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, and we will be discussing about the major reforms and initiatives in the growth and empowerment of MSMEs. Bharat Kheda ji, a warm welcome to you on this podcast.
4: It's a matter of pleasure to be here with you today.
3: And the reason why we are having this special discussion on MSMEs is the growth of the number of the entities that are in business right now, entrepreneurship, the employment that all of this has brought in, and really the contribution to the gross domestic product of the economy as well. But we'll try and simplify it for the benefit of our listeners on Akashvani. Bharat Kheda ji, agar hum isko saral tarike se dekhe, to entrepreneurship ka role kya raha hai MSMEs mein?
4: देखिए, एमएसएमईज में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है इनोवेशन। और मैं ये समझता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का ये एक जरिया है, और इसी फीलिंग के साथ आज के समय में स्टार्टअप्स और एमएसएमईज पूरी अर्थव्यवस्था में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। इनफैक्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स दिस इकोसिस्टम हैज रियली इवॉल्व्ड एंड गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, आई वुड से, इन इंडिया, एंड टुडे इट कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 30% टू द जीडीपी, 35% to manufacturing, 60% to employment, and 48% to exports. So that is the reason why a lot of people say it has become the backbone of the Indian economy.
3: Usually, anyone engaged in entrepreneurship is looking at a business opportunity, and then they're looking to create a system to exploit that opportunity. How do you see the government supporting this energy and spirit of the entrepreneur?
4: I would say the policy support has been a major enabler for the growth of this ecosystem, and the way the policy has also, you know, transformed in the last few years, a lot of new policy interventions have come up. The definition itself of MSME has

0: We are also wanting to incentivize enterprises who adopt AI tools. So we have a scheme called MSME Innovative Scheme, in which we were earlier, you know, focused on incentivizing the enterprises for good quality standards. We had the Z scheme for competitiveness, for which we had the Lean scheme. We were having incubations done for the startups. That was the third component of the scheme. We were encouraging them for filing intellectual property rights. That was the fourth component of the scheme. We were pushing them towards greening and sustainable manufacturing, which was another component of the scheme. So we have now added AI also to that, so that MSMEs are not left behind in this new technology.
1: Bharat Kheda ji, thank you so much for being with us. We have unfortunately run out of time, but the discussion can be endless. That is the scope of the micro, small and medium enterprises. Thank you so much for being with us.
0: Thank you.
2: In the special series, 12 Years of the Modi Government, you are listening to an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer was Arjun J. Chaudhary. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे थे अर्जुन जी चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं रोजगार समाचार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक के पदों हेतु नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 11 में पूर्व संशोधित वेतन बैंड 3 के तहत दो पद और पुलिस अधीक्षक वेतन मैट्रिक लेवल 10 में पूर्व संशोधित वेतन बैंड 3 के अंतर्गत 3 पद रखा गया है। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि तथा आवेदन पत्र राष्ट्रीय जांच अभिकरण NIA की वेबसाइट www.nia.gov.in पर उपलब्ध है। इन पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बाद में अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। योग्य अधिकारियों के नामांकन दस्तावेजों सहित हार्ड कॉपी इस पते पर पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्यालय के सामने केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली 110003। ये आवेदन रोजगार समाचार में प्रकाशन के तिथि से 45 दिनों के भीतर यानी 15 जून तक पहुंच जाने चाहिए। इच्छुक अधिकारी अग्रिम प्रति ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं, साथ ही डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद अपूर्ण आवेदन अथवा आवश्यक दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए 2 मई का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देखा जा सकता है। अंडमान एवं निकोबार पुलिस विभाग में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में हैं। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहन शक्ति प्रशिक्षण अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी, साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के प्रदर्शन के

आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। एग्जीक्यूटिव ब्रांच अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित में सब इंस्पेक्टर ओपन के लिए कुछ पद हैं 28, अनारक्षित वर्ग के लिए 4 पद, 19 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जाति के लिए 4 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है और विभागीय के लिए 3 पद है। अनारक्षित वर्ग के लिए 2 पद और 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा। ग्रुप सी में कांस्टेबल के लिए कुल पद हैं 155, अनारक्षित वर्ग के लिए 66, 65 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जाति के लिए 9 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15 पद, एमएसपी वर्ग के लिए 7 पद और ईएसएम के लिए 1 पद होगा।

ग्रुप सी में कांस्टेबल के लिए कुल पद हैं 155, अनारक्षित वर्ग के लिए 66, 65 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जाति के लिए 9 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15 पद, एमएसपी वर्ग के लिए 7 पद और ईएसएम के लिए 1 पद होगा। कांस्टेबल के लिए कुल पद हैं 4, अनारक्षित वर्ग के लिए 1, 2 पद ओबीसी वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद रखा गया है। सफाई कर्मचारी के लिए कुल पद हैं 10, अनारक्षित वर्ग के लिए 5 पद, 4 पद ओबीसी वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद रखा गया है। फॉलोअर कॉरपोरेट केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए होगा। कुल पद 1 जो ओबीसी वर्ग के लिए ही रखा गया है। फॉलोअर कुक के लिए पद हैं 13, अनारक्षित वर्ग के लिए 6 पद, 5 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जाति के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1-1 पद। फॉलोवर बार्बर कुल पद 1 जो ओबीसी वर्ग के लिए रखा गया है। फॉलोवर वॉशरमैन के लिए कुल पद हैं 3, अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद, ओबीसी के लिए 2 पद रखा गया है। रेडियो ऑपरेटर के लिए कुल पद हैं 71, 36 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 24 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित वर्ग के लिए 4 पद रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पद है। रेडियो टेक्नीशियन के लिए कुल पदों की संख्या है 12, 6 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 4 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा तथा अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1-1 पद है। रिक्तियां अस्थाई है जो बदली जा सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। EWS, MSP, ESM भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। रोजगार समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, और अब आइए गौरव गान के तहत सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ

गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
1: गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: www.terry-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव

0: दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kaka Migahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India

एक पेड़ माँ के नाम हैव कंट्रीब्यूटेड टू एडिंग नियरली 1.19 लाख हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर एनुअली. फोर्थ, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स वेयर इनॉग्रेटेड अक्रॉस दिल्ली. फिफ्थ, लॉन्ग टर्म विजन इंडियाज इमिशन इंटेंसिटी डिक्लाइन 36% बिटवीन 2005 टू 2020. Providing development and ecology can coexist. India's mantra, growth with green responsibility, is setting a global benchmark. Mm-hmm. And the important, no ministry or no single mission can alone protect our environment. India.

कार्यक्रम का पहला फरमाइशी श्रोताओं संदेश हमें भेजा है पीपरिया कबीर धाम छत्तीसगढ़ से कमलकांत दिया ने। तो आइए सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद का रईस फिल्म का ये गीत।

अगले गीत के लिए हमें फरमाइशी संदेश भेजा है रघुवीर नगर से दिलवर एलिजा ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू का ये गीत। तो आइए सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

रंगत से जय अजय और रिंकू ने हमें फरमाइशी संदेश भेजा है। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं नमस्ते लंदन का ये गीत, तो आइए सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद का ये गीत जुबीन गर्ग की आवाज़ में।

उदयपुर राजस्थान से सत्यनारायण, अवंती, जसिका और लाचो ने हमें फरमाइशी संदेश भेजा है। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं ऐ दिल मुश्किल है का एक गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद का ये गीत ऐ दिल है मुश्किल फिल्म से।

और कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म ऑल इज वेल का ये गीत। मिथुन और तुलसी कुमार की आवाजों में इस गीत के लिए फरमाइशी संदेश भेजा है कार निकोबार से फोबी ने, तो सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम संदेश आते हैं अब यही संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः मछुआरों से 8 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:30 और 48 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: Hello, mic testing. 1, 2, 3. The time is 4:44:59.
1: 45 minutes and seconds. Boli aisa bol. Time is 4:45 seconds.
0: Then time is 4:45:11.
1: 4:45 ab 16
0: hai na 17 18 19 aisa bol. Haan haan. Hello, mic testing. The time is 4:45:26:27:28:29:30. हेलो माइक टेस्टिंग द टाइम इज 4:46:09:10:11
1: ऐसा बोले थे आपको सिग्नल काटते रहे थे कट करना. Left tracker.
0: Testing computer on left tracker. Haan. The time is.
1: अब computer test करना है ना. इसलिए उसको inform. अब cut.

0: टेस्टिंग राइट कंप्यूटर
1: टेस्टिंग राइट कंप्यूटर
0: P1।
1: पी एन
0: अब ये क्लोज करके।
1: क्लोज।

0: हेलो माइक टेस्टिंग, द टाइम इज फोर।
1: अब टाइम नहीं, टाइम एक बार बहुत है ना। अब कंप्यूटर ये टेस्ट करने के,
0: हाँ
1: उधर एक आदमी बैठा है ना, उनको
0: हाँ
1: इन्फॉर्म करना है कौन सा कंप्यूटर, उनको मैं नहीं बोले कौन सा
0: हाँ
1: प्ले करना। अब टेस्टिंग कंप्यूटर वन, राइट ट्रैक,
0: राइट
1: लेफ्ट ट्रैक, राइट
0: हाँ
1: ट्रैक,
0: राइट ट्रैक
1: लेफ्ट राइट।
0: हाँ
1: अब ऐसा बोल, राइट कंप्यूटर है, लेफ्ट कंप्यूटर,
0: ओके
1: लेफ्ट कंप्यूटर का लेफ्ट राइट, राइट कंप्यूटर का लेफ्ट राइट।
0: हाँ इस तरह बोलना
1: हाँ ऐसा बोलना, बोल के प्ले करना। अब बोल दिया।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 16वीं तिथि तदनुसार 6 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28:40 हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: अनमोल विचार।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण केवल हमारे चारों ओर का वातावरण नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ वायु, निर्मल जल और हरियाली से भरी धरती ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे अनमोल विरासत है। आइए आज इस बात पर विचार करें, इस विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लें और एक पेड़, एक कदम, एक प्रयास के माध्यम से धरती को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। प्रकृति का सम्मान ही मानवता का सम्मान है। पर्यावरण की रक्षा करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए हरियाली बढ़ाने और प्रकृति को बचाने का प्रण लें।
0: श्रोताओं, अनमोल विचार अभी आपने सुना। अब आरंभ होता है कार्यक्रम प्रभाती वंदना। तो सबसे पहले सुनिए संवेद स्वरों में मातृ वंदना।